102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। अब प्रातः के 5:58 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल

0: तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। निजी प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, जहां विश्वास है वहां कृष्ण है। मन की हर उलझन में उनका नाम ले लेना, क्योंकि जहां कृष्ण का स्मरण है वहां जीवन में शांति और आनंद स्वयं उतर आता है।

ठुमक ठुमक नन्ही से चरणों से जब ब्रज की धरा को छुआ, हर आंगन ने जैसे स्वयं कृष्ण को पाया।

आरती की ज्योति में प्रकाश। नंदलाल के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर जाएं।

अभी तक आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज आपने जिन स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी वे थे वेणुगोपाल गोस्वामी, अंजलि जैन, मौसमी दत्ता और साथी।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन बिंदु में आज सुनते हैं श्री कृष्ण के विचार, आलेख और वाचन यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति, प्रेम, वात्सल्य, राजनीति और दुष्टों दानवों का संहार करने के लिए कूटनीति, यदि इन सभी का समावेश एक ही चरित्र में किया जाए तो एक ही चित्र, एक ही छवि हमारी अंतरात्मा में अंकित होती है। वो चित्र, वो छवि आनंद कंद मुरली मनोहर श्री कृष्ण की है। वे माता यशोदा के लाडले कन्हैया हैं, वे गोपियों के प्यारे रास रासेश्वर हैं, ब्रजवासियों के सच्चे सखा हैं, राधा के सांवरे हैं और गीता के कर्म संदेश के प्रणेता हैं। कृष्ण का चरित्र जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी है, अर्थात जहाँ प्रेम है, जहाँ भक्ति है, जहाँ वात्सल्य है और जहाँ निष्काम कर्म है, वहाँ श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जो अजन्मा हैं, महामानव हैं और भक्तों के सभी बिगड़े कामों को बनाने वाले हैं, भारतीय संस्कृति के एक अभूतपूर्व पात्र हैं। जनमानस के जीवन का हर भाग उनकी भक्ति, उनके प्रेम, उनके उपदेशों से अनुप्राणित होता है। जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब दुष्ट दानवी शक्तियों का बाहुल्य हुआ है, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुए हैं, आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, तब तब श्री कृष्ण का अवतार किसी न किसी रूप में हुआ है। श्री कृष्ण पर्याय हैं सात्विक प्रवृत्तियों के। यदि देखा जाए तो हमारा अंतर्मन भी एक संपूर्ण सृष्टि के समान है। यहाँ सद्भावनाएं, प्रेम, कर्म और स्नेह की प्रवृत्ति पैदा होती है। यहीं पर राग, द्वेष, अनाचार, अलगाव और हिंसा की दानवी वृत्तियों का भी जन्म होता है।

0: प्रश्न यह होता है कि हम सत्य, प्रेम, वात्सल्य, कर्तव्य पालन जैसी भावना को इस मन रूपी सृष्टि में बसाएं जो कि श्री कृष्ण की पर्याय हैं, जिनकी महक से हमारा ये मन वृंदावन महक उठे, अथवा उन आसुरी तामसिक वृत्तियों को मन में स्थायित्व प्रदान करें जिससे हमारा मन सड़न और दुर्गंध से भर उठे, और जिससे न केवल हम अपितु हमारा समूचा समाज पतन की ओर उन्मुख होने लगे। स्पष्ट है कि ज्ञानी जन तो श्री कृष्ण को ही अपने मन में स्थायित्व प्रदान कराना चाहेंगे, जिससे न केवल उनका मन सुवासित हो अपितु प्रेम की बांसुरी की मधुर स्वर लहरियों से उनका मन स्पंदित हो, पुलकित हो, और इस समाज में प्रेम, भक्ति, कर्म और स्नेह की पुण्य सलीला प्रवाहित हो सके। अज्ञानी मन जो स्वार्थ में डूबा है, आत्म केंद्रित है, ईर्ष्या से अप्लावित है, अलगाव खोज रहा है, अपनी ही प्रगति में प्रसन्न होना चाहता है, अपने ही सुख में सुखी होना चाहता है, दूसरे दुखी हों, दूसरे कष्ट सहें, इससे उसे कोई सरोकार नहीं है, ऐसे मन में श्री कृष्ण का वास कदापि नहीं हो सकता। ऐसा मन मूढ़ है और काम, क्रोध, लोभ, मोह की मायावी शक्तियों से उसका पतन अवश्यंभावी है। निष्काम भाव से सुनियोजित कर्म, निर्विकार भाव से ईश्वर का स्मरण ही जीवन का सच्चा सार्थक मार्ग है, और यही श्री कृष्ण का सच्चा स्मरण है। धर्म, अर्थ, काम।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने श्री कृष्ण के विचार। आलेख और वाचन यतीन्द्र चतुर्वेदी का था।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीत पद प्रसारण। संगीतकार हैं सतीश भाटिया, गायक स्वर ए हरिहरन, मिताली बी सिंह और उत्तरा केलकर के।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ राम उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

अभी तक आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसारण। संगीतकार थे सतीश भाटिया, गायक स्वर ए हरिहरन, मिताली बी सिंह और उत्तरा केलकर के। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। प्रातः 7 बजे आप सुन सकते हैं कुछ भूले बिसरे गीत। प्रातः 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा संगीत रूपक यशोदा मैया को दुलारो नंदलाल। लेखक होंगे मोहन स्वरूप भाटिया, संगीत एवं प्रस्तुति सुरेश गुप्ता की होगी। कार्यक्रम गीतांजलि आपको सुनवाएंगे प्रातः 8:30 पर। प्रातः 9 बजे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा भेंट वार्ता, विषय रहेगा नेत्रदान महादान, सावधानी एवं सुझाव। डॉक्टर MK तनेजा से भेंट करेंगे OP सिंह। कार्यक्रम आबोहवा का समय रहेगा प्रातः 9:25। कार्यक्रम में विषय रहेगा शौचालय और पर्यावरण, जानकारी देंगी नेहा प्रधान। गांधी चर्चा आपको सुनवाएंगे प्रातः 9:30 पर। इस कार्यक्रम में आज विषय रहेगा श्रम शक्ति की उपयोगिता और गांधी जी के विचार। प्रातः 9:45 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम श्री कृष्ण के विविध आयाम, आलेख विजेता चतुर्वेदी का, संयोजन OP सिंह का होगा। दिन में 10 बजे आपको सुनवाएंगे संगीत रूपक कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेखक डॉक्टर नटवर नागर होंगे, वाचन स्वर देवराज कृष्ण दीक्षित और अंजुसूत के होंगे।

0: प्रस्तुति विजय सिंह नौलखा की होगी। फिल्म संगीत सुनिएगा प्रातः 10:30 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे। दिन में 12 बजे आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। ब्रज लोकगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं अपराह्न 12:30 पर। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे पंडित दामोदर शर्मा। वनिता लोक कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे अपराह्न 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे घर घर जन्मे कनाई और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। इसी कार्यक्रम में सुनेगा विशेष कार्यक्रम ब्रज में जन्मे कृष्ण कनाई। प्रस्तुति सहयोग उषा पांडे का होगा, संयोजक होंगे विजय सिंह नौलखा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एवं CIEIT द्वारा उमंग आप सुन सकते हैं अपराह्न 2:30 पर। अपराह्न 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। सांध्यकालीन सभा शुरू करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी के साथ। इस कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व और भारतीय संस्कृति। इसी के साथ एक और विषय रहेगा दादा भाई नौरोजी जयंती। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा झलकी मैं नहीं मां कहन खायो। प्रस्तुति यतीन्द्र चतुर्वेदी की, लेखक होंगे श्याम सुंदर सुमन। ब्रज साहित्यिक इस कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं ब्रज नवकथा जो जो होए धर्म की हानि, प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर दिनेश पाठक शशि। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:50 पर। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा ओबी आधारित भेंट वार्ता गन्ना की खेती और छाता शुगर मिल। चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना मंत्री से भेंट करेंगे दिलीप यादव। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी आपको सुनवाएंगे संध्या 7:31 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग होगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10 बजे सुनिएगा नाटक कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेखक होंगे लक्ष्मीकांत उपाध्याय, प्रस्तुति अचला नागर की। आज रात्रि 11:10 पर हम आपको सुनवाएंगे मंदिर श्री द्वारिकाधीश एवं श्री कृष्ण जन्म स्थल के भागवत भवन से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। मंदिर श्री द्वारिकाधीश से आंखों देखा हाल सुनाएंगी डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल। कृष्ण जन्म स्थल के भागवत भवन से आंखों देखा हाल सुनाएंगे श्रीयुत श्री कृष्ण और देश दीपक मिश्रा। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में विषय है पशुओं में चर्म रोग और उपचार, जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम पशुओं में चर्म रोग एवं उसके निदान के बारे में जानकारी देंगे। वह रोग जो बाहरी चमड़ी को खराब कर देते हैं चर्म रोग कहलाते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो परजीवी चर्म रोग और दूसरा अपरिजीवी चर्म रोग। पहले चर्चा करते हैं परजीवी चर्म रोगों पर। परजीवी चर्म रोग में पहला रोग है रिंग वॉर्म यानी दांत। यह एक फंगस द्वारा फैलाया जाता है जो कि छोटी आयु के पशुओं विशेषकर बच्चों में अधिक देखा गया है। इसका प्रकोप पहले कानों की जड़ों के पास प्रारंभ होकर धीरे धीरे चेहरे व गर्दन तक पहुंच जाता है, कभी कभार संपूर्ण शरीर पर भी यह हो जाता है। कम दूध मिलने वाले

बच्चों या पेट में कृमि होने के कारण यह रोग हो जाता है। यह रोग 7 से 28 दिनों में हो जाता है। प्रारंभ में इसमें खुजली मचती है तथा छोटे छोटे दाने पड़ने लगते हैं जो बढ़कर गोल गोल चकते का रूप ले लेते हैं। जहाँ यह रोग होता है वहाँ बाल गिरकर खाल मोटी हो जाती है। बीमारी की पहचान लक्षण देखकर माइक्रोस्कोप द्वारा फंगस की पहचान कर रोग की पुष्टि की जाती है। दूसरा रोग है खुजली या खारिश। खुजली एक छूत से फैलने वाली बीमारी है जो एक से दूसरे पशु को संपर्क के द्वारा फैलती है। यह रोग माइट्स एक कीड़े के द्वारा फैलाया जाता है। कीड़ा त्वचा के अंदर घुसकर अंडे देता है। इस रोग के लक्षण इस प्रकार से हैं: पशु खुर से अपना शरीर खुजलाता है या पास खड़े पेड़ या दीवार से रगड़ता रहता है। ग्रसित भाग के बाल गिर जाते हैं तथा त्वचा सूखकर मोटी हो जाती है। त्वचा संबंधी एक अन्य परजीवी रोग है बार्बल मक्खी रोग। यह मक्खी रोगी पशु के पैरों में चिपक कर अंडे देती है तथा अंडे त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं और 3 से 6 दिनों में लार्वा निकलते हैं। यही लार्वा बाल की जड़ के साथ चमड़ी में घुसकर ग्रास नली की ओर जाकर पशु की पीठ वाले भाग में पहुंच जाते हैं तथा प्रत्येक लार्वा लगभग 3 सेंटीमीटर का एक फफोला वहां पर बना देता है। अंडे से लार्वा निकल पशु के अंदर खुजली पैदा करते हैं। पशु बेचैन होकर खुजली करने लगता है। फफोले फटने से सफेद लार्वा बाहर आते हैं तथा पशु के चाटने से मुख के द्वारा लार्वा भोजन प्रणाली में पहुंच जाते हैं जिसके कारण पशु ठीक प्रकार से खा पी नहीं पाता तथा निर्बल हो जाता है। अपरिजीवी रोग इस प्रकार से हैं: पहला रोग है कंडू। यह त्वचा में निरंतर तथा रुक रुक कर होने वाली उत्तेजना है जो एक प्रकार की खुजली से मिलती जुलती है। दूसरा है एक्जिमा। इसमें शरीर के विभिन्न भागों की त्वचा की ऊपरी सतह सूजकर खुजलाने लगती है। खुजलाने के बाद उस स्थान पर कुछ तरल पदार्थ सा निकलने लगता है, फिर वह जम जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, शुष्क और तर। शुष्क आंखों के नीचे पलकों तथा होठों के किनारों पर अधिक होता है। एक अन्य व्याधि है त्वचा शोथ। यह त्वचा की अंदरूनी परत की सूजन है। इसमें खुजली व जलन होने लगती है। यह चर्म रोग पेट में कब्ज होने, कीड़े मकोड़ों के काटने, विष खाने, कुप्रबंधन, पशुओं को गंदे स्थानों पर रखने तथा कभी कभार शरीर में कुछ खनिज लवणों और विटामिनों की कमी के कारण हो जाता है। इसके लक्षण इस प्रकार से हैं: शरीर में खुजली, बेचैनी, दर्द, खुजाने वाले स्थान पर कुछ तरल पदार्थ आना, लाल व शुष्क हो जाना तथा कुछ स्थानों पर त्वचा का सूज जाना इसके प्रमुख लक्षण हैं। चर्म रोगों की चिकित्सा हेतु पूरे शरीर के रोगग्रस्त भाग को नीम सोप से धोकर साफ कर लेना चाहिए। एंटीसेप्टिक मल्लम जैसे जिंक बोरिक 1:4 बेसलीन के साथ प्रयोग करना चाहिए। मिल्क आयोडीन का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। एंटीहिस्टामिनिक एवं एंटी एलर्जिक दवाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए पशु को हल्के पौष्टिक तथा शीघ्र पाचक चारे, हरी घास, दलिया एवं चोकर आदि खिलाना चाहिए।

맞아, 수면 길고.

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना ये गीत फिल्म मुगले आजम से। गीत रचना शकील बदायूनी की थी, संगीत नौशाद का था।

राजेंद्र किशन का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म मिस मैरी से। संगीत निर्देशन हेमंत कुमार का था।

आपने सुना ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म कोहिनूर से। गीत रचना शकील बदायूनी की थी, संगीत नौशाद का था।

संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इसी के साथ आज के भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, गीत रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की।

0: करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके संविधान में वृद्ध करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: विद्या का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले।

नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आस्था के साथ आर्थिकी पर भी है सरकार का ध्यान। प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में देश विदेश से बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। 500 ड्रोन के जरिए आसमान में जीवंत होंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारतीय टीम ने हांगकांग को हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात करके बाढ़ की स्थिति का हाल जाना। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी से भी फोन पर बाढ़ की स्थिति का फीडबैक लिया। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि बाढ़ राहत कार्यों की निरंतर निगरानी की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने बाढ़ से प्रभावित लगभग 1000 परिवारों को राहत सामग्री बांटी और आश्रयहीन हुए परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार बाढ़ की आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे की रिपोर्ट आते ही किसानों के खाते

0: डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों तक हर संभव मदद और राहत पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।
1: बाढ़ राहत कार्य के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियां, राहत शिविर और जिन गांवों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस चुका है वहां पर उन सभी प्रभावित परिवारों के लिए शासन ने जो सुविधा उपलब्ध करवाई है उनके रहने के लिए, भोजन के लिए और जो लोग अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घर पे उन पर राहत सामग्री की किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ का स्थायी समाधान निकालना चाहती है, इसके लिए ड्रेजिंग के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। इसमें जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उन्हें उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी। उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर और बढ़ने के बाद प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। लखीमपुर खीरी में शारदा, अयोध्या और तुर्तीपार में सरयू, बलिया में घाघरा और बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि और प्रमाण पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार मथुरा सहित सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ आर्थिकी पर भी सरकार ध्यान दे रही है।
2: विरासत केवल किसी भौतिक वस्तु में नहीं होती और इसीलिए डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया आयाम जोड़ा है कि विरासत भी और विकास भी, आस्था भी और आर्थिकी भी, यानी अर्थव्यवस्था भी, परंपरा भी और परंपरा के साथ साथ परिवर्तन भी।
0: मुख्यमंत्री ने कल देर शाम वृंदावन में नवनिर्मित कान्हा भक्ति स्तंभ मार्ग का भी लोकार्पण किया। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मार्ग का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात और भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये मार्ग शहर के लिए बड़ी जीवन रेखा साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कल मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 9वीं बोर्ड की बैठक में ब्रज क्षेत्र में जारी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा परियोजना का काम अगले 3 वर्षों में 3 चरणों में पूरा कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मथुरा में आज जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: समूचे ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। वहीं यहाँ के वृंदावन श्री धाम ठाकुर श्री राधा नील माधव जी महाराज मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह है। महाराज श्री परम अवस्थी के सानिध्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और श्रद्धालु कृष्ण भक्ति में लीन है। यहाँ के प्रमुख मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रिय कांजू मंदिर, चंद्रोदय मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: कल मथुरा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

0: गोरखपुर में प्रदेश के 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय इन पुरस्कारों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनाने में मदद करेंगे।
1: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी,
2: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
1: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारतीय टीम ने कल हांगकांग को 137 रन के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 124 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में हांगकांग की पूरी टीम 56 रन पर सिमट गई। राजस्व वादों के निस्तारण में सरलता और पारदर्शिता को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की ओर से कल 3 पोर्टल लॉन्च किए गए। राजस्व परिषद बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों को तय समय सीमा में निस्तारित करने के लिए यह पहल की गई है। इस व्यवस्था से कागजी प्रक्रिया कम होगी और वाद की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करना आसान होगा। राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही और शिथिलता पर प्रदेश सरकार ने 4 तहसीलदार और 1 नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा आस्था के साथ आर्थिकी पर भी है सरकार का ध्यान। प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में देश विदेश से बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु 500 ड्रोन के जरिए आसमान में जीवंत होंगी श्री कृष्ण की लीलाएं। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारतीय टीम ने हांगकांग को हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के

0: दशों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार, लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दीपांकर राय चौधरी का हवाइन गिटार पर बजाया राग नट भैरव।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

भैया, भारत विविधताओं को देश है, जहाँ अनेक धर्म, संस्कृतियाँ और परंपराएं विद्यमान हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाए जाए हैं। इन्हीं पावन पर्वन में से एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को ये पावन पर्व, जो आज हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए रहे हैं। तो जय क्रम में आपको सुनवा में है संगीत रूपक जसोदा मैया को दुलारो नंदलाल, लेखक हैं मोहन स्वरूप भाटिया, प्रस्तुति सुरेश गुप्ता की।

0: शिव और ब्रह्मा ने विष्णु का करके जय जयकार।
1: भगवान विष्णु की
2: जय हो,
1: भगवान विष्णु की
2: जय हो,
1: भगवान विष्णु की
2: जय हो।

जी हाँ भैया, वो अभी तक आप सुन रहे जे संगीत रूपक जसोदा मैया को दुलारो नंदलाल, लेखक है मोहन स्वरूप भाटिया, संगीत एवं प्रस्तुति सुरेश गुप्ता की ही। और जय के संग आज को जे ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुए है। सुनबे बारे सभी श्रोता साथिन को हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स

0: मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Update rahe, aage rahe. X par at AIR News Hindi aur Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एनरी सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया।

0: बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है, जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F-404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय

0: केस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने AI सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. ISRO successfully launches its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh. Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends 2 more aircraft with relief materials to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. Festival of Janmashtami, which marks birth of Lord Krishna, being celebrated across the country today. And in women's cricket, India storm into semi-final of 2020 Asia Cup, beating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai. Now the news in detail. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. ISRO Chairman V. Narayanan said the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport.
3: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
2: Our correspondent has filed this report.
4: ISRO said that 2,367 kg satellite was placed in its intended sub-geosynchronous transfer orbit about 18 minutes after liftoff. EOS-5 is a state-of-the-art Earth observation spacecraft and India's first imaging satellite to be placed in a geosynchronous orbit. It is designed to provide frequent, near real-time imagery of large areas, strengthening India's capability to monitor the Earth. The satellite's data will support applications in agriculture, natural resource monitoring and disaster management. It can provide timely information during disasters and help authorities plan and respond to emergencies. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. The mission also demonstrates India's growing capability in indigenous launch vehicle technology. Allu Murli, Akashwani.

0: on trust. 100% chance of El Nino lasting till February 2027 and intensifying into a very strong event in the coming months, raising the risk of floods, drought and extreme heat across large parts of the world, according to World Meteorological Organization reports in the Sun Times. The Indian Express cites the decision of the Apex Court on bar councils have no disciplinary power over law students. And finally, the Times of India mentions the passing away of Gloria Steinem, the U.S. activists and feminists having a great influence on India on her during her trip to the country. The paper adds Steinem even featured in sari ads as a way of supplementing her income in India. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. ISRO successfully launches its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh. Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends two more aircraft with relief material to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. Festival of Janmashtami, which marks the birth of Lord Krishna, being celebrated across the country today. And in women's cricket, India storm into semi-final of T20 Asia Cup, beating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहिदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंजविद करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। भारत ने नेपाल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी राहत और बचाव कोशिशों में मुआवनत के लिए इमदादी सामान के साथ दो और तैयारे वहां भेजे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है।

0: FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।

कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं पंडित बिरजू महाराज और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म देवदास में। इस गीत को लिखा नुसरत बद्री ने, संगीत इस्माइल दरबार का।

थाई शाम रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना पंडित बिरजू महाराज और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में फिल्म देवदास से। गीत को लिखा था नुसरत बद्री ने, संगीत इस्माइल दरबार का। कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले, उदित नारायण और साथियों के स्वरों में फिल्म लगान से। गीत रचना जावेद अख्तर की थी, संगीत एआर रहमान का था। कार्यक्रम में वक्त है एक व्यावसायिक अंतराल का।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: भाभी, ये पकौड़ी तो बहुत टेस्टी है।
6: बाजरे की पकौड़ी है।
5: बाजरे की पकौड़ी, वाह।
6: लोगों को ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जैसे श्री अन्न के व्यंजन अपनाना चाहिए, क्योंकि यह पोषक तत्वों, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर होते हैं और पाचन सुधार में मदद करते हैं।
5: अच्छा भाभी,
6: श्री अन्न से रोटी, दलिया, खिचड़ी, लड्डू, पोहा आदि बना सकते हैं।
7: श्री अन्न अपनाएं, स्वास्थ्य बनाएं।
8: अधिक जानकारी के लिए अपने उप कृषि निदेशक से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: भाभी, ये पकौड़ी तो बहुत टेस्टी है।
6: बाजरे की पकौड़ी है।
5: बाजरे की पकौड़ी, वाह।
6: लोगों को ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जैसे श्री अन्न के व्यंजन अपनाना चाहिए, क्योंकि यह पोषक तत्वों, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर होते हैं और पाचन सुधार में मदद करते हैं।
5: अच्छा भाभी,
6: श्री अन्न से रोटी, दलिया, खिचड़ी, लड्डू, पोहा आदि बना सकते हैं।
7: श्री अन्न अपनाएं, स्वास्थ्य बनाएं।
8: अधिक जानकारी के लिए अपने उप कृषि निदेशक से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम में आ गया, ये सुनते हैं ये अगला गीत, फिल्म किसना द वॉरियर पोइट से।
9: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: जावेद अख्तर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। सुखविंदर सिंह, स्माइल दरबार, आयशा दरबार और शैलजा के स्वरों में फिल्म किसना द वॉरियर पोइट से। संगीत निर्देशक थे ए.आर. रहमान।
1: चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली,

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना ये गीत अमित गुप्ता और साथियों की आवाजों में फिल्म ड्रीम गर्ल से। गीत लिखा कुमार ने, संगीत मीत ब्रदर्स का था। और इसी के साथ कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 11:10 से हम आपको सुनवाएंगे मंदिर श्री द्वारिकाधीश एवं श्री कृष्ण जन्म स्थल के भागवत भवन से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। मंदिर श्री द्वारिकाधीश से आंखों देखा हाल सुनाएंगी डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल। श्री कृष्ण जन्म स्थल के भागवत भवन से आंखों देखा हाल सुनाएंगे श्रीयुत श्री कृष्ण और देश दीपक मिश्रा। तकनीकी सहयोग अशोक कुमार सिंह, सुजीत कुमार प्रसाद, नागेंद्र कुमार शर्मा और प्रेम सिंह का होगा। प्रस्तुति सहयोग संजीव कुमार व्यास और डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत का होगा। तकनीकी संयोजन पूरणमल मीणा का होगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे ओपी सिंह।

0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता, नेत्रदान महादान सावधानी एवं सुझाव। इस भेंट वार्ता में डॉक्टर एम के तनेजा से भेंट की है ओपी सिंह ने।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम देखें तो आंखें हमारी बहुत अनमोल है। आंखें वो अंग हैं हमारे जीवन में जिनसे हम दुनिया देखते हैं, दुनिया की रंगीनी देखते हैं। दुनिया को देखने का नज़रिया हमें आंखें ही देती हैं, लेकिन किसी के आंख न हो या नज़र नहीं हो या दृष्टि नहीं हो तो उसके लिए दुनिया के क्या मायने हैं ये हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो किसी भी कारण से अपनी दृष्टि खो चुके हैं, जिनकी आंखें देखने में समर्थ नहीं हैं, कई बार हम अचानक दुनिया छोड़ते हैं या समय से भी छोड़ते हैं, तो अगर हम अपनी आंखों को दान लिख दें तो उन आंखों से हम अपने बाद भी दुनिया को देख सकते हैं। ये कितना बड़ा पुण्य का काम है और इसीलिए शायद जो आंखों का दान है हम महादान में कहते हैं, चाहे अंगदान हो चाहे आंखों का दान हो, उसको दान ही नहीं महादान कहा जाता है। तो कैसे आंखों का दान हम कर सकते हैं, क्या कुछ इसकी सामान्य प्रक्रिया है, जब आंखों का दान करते हैं तो कौन सा आंखों का पार्ट जो है वो लिया जाता है।

0: तो आज हमारे साथ डॉक्टर तनेजा जी हैं, एम के तनेजा साहब, मथुरा के वरिष्ठ आई सर्जनों में आपका नाम है, और बहुत दिनों से हमारे आपके बीच आते ही रहते हैं, लेकिन आज फिर हमने बुलाया है और उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब बताइए, जो आँखों के दान की बात है,
1: हाँ,
0: वो
1: धन्यवाद साहब।
0: हाँ उसमें थोड़ा बताइए कि कितना पुण्य का काम है, कितना
1: बहुत
0: बड़ा काम
1: बहुत
0: है।
1: पुण्य का मान, मतलब इतना पुण्य का काम है जो इंसान इस सुंदर संसार को देख नहीं पाता, वो केवल और केवल हमारी वजह से वो देख सकता है। केवल हमने करना क्या है, आँखों को अपना दान कर देना है। और वो दान का भी ये है कि वो मरणोपरांत में आँखों को, पूरी आँख को नहीं लिया जाता है, केवल एक जो ट्रांसपेरेंट, जो श्वेत पटल है उसको लिया जाते हैं, बाकी आप पूरी आँख को नहीं निकालते हैं हम। उससे कोई चेहरे के अंदर की बनावट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है,
0: कोई विकृति नहीं आती
1: कुछ
0: है।
1: विकृति नहीं आती है, क्योंकि थोड़ा सा मिथ्या है कि सब निकलवाएंगे तो पूरी चेहरा खराब हो जाएगा, कुछ नहीं। हमको केवल 1 सेंटीमीटर का पार्ट लेना है आँख का, और वो आँखों को हम किसी दो लोगों की
0: रोशनी
1: जिंदगी
0: है
1: रोशनी दे सकते
0: जी।
1: हैं।
0: तो ये जो सफेद पार्ट बता दीजिए, जिसको सामान्य गांव की भाषा में पुतली बोलते हैं, वो
1: पुतली बोलते हैं
0: जी।
1: सफेद कॉर्निया, हम अपनी लैंग्वेज में कॉर्निया बोलते हैं, हिंदी में इसको श्वेत पटल बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता नहीं है। उसके आगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो आयरिस, वो अलग कलर का था, ब्राउन कलर का, ब्लू कलर का। उसको निकाल के हम किसी कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, और वो हमको 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ही आई बैंक के अंदर पहुँचाना पड़ता है।
0: तो अब इसमें यह है कि जिस व्यक्ति को, एक तो आपने कहा कि जब हम ये दुनिया छोड़ रहे हैं तब किसी भी कारण से, चाहे अकस्मात या समय से, तो उस समय आपको फिर एक ये लिख के देना पड़ेगा कि मैं अपनी आंखों को दान करता हूँ, नेत्र दान करता हूँ
1: उससे पहले, यानी कि जब
0: जी।
1: वो जिंदा रहता है, वो अपना एक प्लेटफॉर्म भरता है, उसमें उसका मेंशन होता है कि मैं मरने के बाद मेरी आंखों को निकाल दिया जाए।
0: तो उसमें फिर उसके परिवार वाले लोग उसकी
1: हाँ, उस समय
0: सहमति के
1: फिर,
0: हिसाब से
1: हाँ उस समय जाते हैं उनके घर के अंदर, अगर वो हमको इन्फॉर्म करते हैं तो।
0: जी।
1: और वो भी एक प्रक्रिया जो है 2 से 4 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। और फिर जैसा भी पता है कि दुख का समय तो होता ही है, उस समय
0: हाँ,
1: उनको फिर समझाया
0: लेकिन
1: जाते हैं,
0: पुण्य इसीलिए है कि आपके बाद भी वो आंखें
1: अब
0: किसी के
1: आप
0: काम आ रही हैं।
1: काम आ सकते
0: शरीर तो
1: हो।
0: जल ही जाना है, खत्म हो जाना है, लेकिन
1: हाँ
0: आंखों से आप दुनिया किसी को देखने का मौका दे रहे हैं। जैसे आपने कहा बड़ी सुंदर उसमें, कि
1: बिल्कुल,
0: किसी व्यक्ति को जो दुनिया नहीं देख पा रहा, उसको देखने का आप मौका दे रहे हो।
1: हाँ जैसे वो कहते हैं ना, चिता में जाएगी राख बनेगी, कब्र में जाएगी मिट्टी बनेगी, और नेत्रों का कर दो दान, किसी दो की जिंदगी रोशन हो
0: क्या
1: जाएगी।
0: बात है।
1: तो
0: तो
1: ये
0: दुनिया देखने का मौका
1: देखो कमा
0: आप दे रहे हैं। तो ये
1: मिलने
0: अब जैसे मथुरा जैसा शहर है, आप जैसे यहाँ सर्जन भी हैं और भी हॉस्पिटल है, तो यहाँ ये काम हो सकता है?
1: बिल्कुल होता है, हो रहा है यहाँ पे। इधर
0: हाँ।
1: आपके वृंदावन में श्रॉफ आई सेंटर है, वहाँ पे होता है ये, आई बैंक भी है उनका, और उनके दिल्ली से आते भी हैं ऑपरेशन करने के लिए।
0: जी।
1: इस ट्रांसप्लांट, दैट इज कॉल्ड द कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, ये वो करते हैं।
0: तो बस आपको एक प्लेस देनी है, आप शपथ
1: एक
0: लेनी है कि भाई मैं जा रहा हूं कि
1: प्लेस
0: मेरे बाद
1: देना
0: मेरी
1: है,
0: आंखों से लोग दुनिया
1: और
0: देखें।
1: प्लेस देना, ये प्लेस तो पूरी सोसाइटी का है, वो करें, मिल बैठ के बातें करें, भाई हम देंगे हम देंगे, तो थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन उतना कार्य हो नहीं पा रहा है। हमारे पास इस समय भारत में करीब 12 लाख लोग केवल श्वेत पटल की वजह से, कॉर्निया का है उस वजह से, ब्लाइंड है 12 लाख, और 25,000 पर साल बढ़ रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट के डाटा हैं, वो कहते हैं कि हमें 1 लाख पर ईयर करेंगे तब इसको हम जीत पाएंगे।
0: जी। अब इसमें लेकिन लाखों लोग प्रतीक्षा में हैं, लेकिन कई लाख लोग दुनिया छोड़ भी रहे,
1: छोड़ भी
0: हर
1: रहे,
0: साल छोड़ जाते हैं,
1: हाँ
0: और एक्सीडेंटल केस ही अगर हम देखें तो
1: वही बोल
0: लाखों
1: रहा
0: लोग
1: हूँ।
0: तो उसमें चले जाते हैं। तो एक व्यक्ति अगर शपथ लेना चाहता है, लिखा पढ़त करना चाहता है, दान करना चाहता है, तो कहाँ उसको जाके ये प्रक्रिया करनी
1: ये
0: पड़ेगी?
1: मैंने बताया, ये तो श्रॉफ में है,
0: हाँ
1: बाकी अपने जिला अस्पताल में भी इनकी प्रोसेस है,
0: हाँ
1: प्लेटफॉर्म वगैरह तो मिल जाते हैं।
0: हाँ वो कोई बहुत ज़्यादा कागजी
1: कुछ
0: कार्रवाई नहीं है।
1: कुछ नहीं है, केवल आपने नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, साइन करने हैं, बस अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए और किसी फैमिली मेंबर का एक साइन और करा लीजिए, तो बस वो करके वहाँ।
0: और फैमिली मेंबर को भी, मतलब परिवार में हम ये बता के रखेंगे, भाई
1: नहीं
0: मैंने
1: वो
0: ये शपथ
1: बहुत,
0: ली
1: नहीं
0: है,
1: नहीं बहुत ज़रूरी
0: मैं
1: है।
0: कैसे भी जाऊं लेकिन ये काम।

0: मेरे ब्याह पे आप जरूर
1: वो
0: कर दीजिएगा।
1: इसीलिए जो उनके दूसरे थे साइन कराते हैं, तो वो कहते थे भाई आप भी तो उस समय आई थी, तो वो फिर यस कर देते हैं, फिर सब क्लियर हो जाए। पता है कि उस समय बड़ा कठिन होता है क्योंकि और लोग आ जाते हैं, फिर
0: वो
1: कोई
0: कहते
1: क्या
0: हैं।
1: कहता है, कोई क्या कहता है, कोई अरे वो तो चश्मा लगाते थे, उनकी आंख क्यों दे रहे हो। तो ये सब मिथ्या चीज़ें हैं। चश्मा लगाने वाला भी दे सकता है, अगर आपके ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ है वो भी दे सकता है, किसी भी उम्र का दे सकता है,
0: वो आंख तो एक तरह से कैमरे का लेंस है,
1: कैमरे का लेंस।
0: जिसमें भी लगा दोगे वो काम करने
1: हाँ,
0: लगेगा।
1: अरे नहीं, उनकी आंखें तो बन चुकी थी, तो कोई वो तो बनी हुई आंखों का नहीं होता, वो भी नहीं। हमें
0: हाँ,
1: तो ऊपर का पार्ट चाहिए, बनने का काम वो मोतियाबिंद कैटरेक्ट वो अलग चीज़ होती
0: अलग
1: है,
0: चीज
1: ये
0: है।
1: अलग चीज़ है। मोतियाबिंद का तो चलो चारों तरफ से ऑपरेशन हो जाता है, तो वो हम आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। इधर हमारे पास कोई आर्टिफिशियल चीज़ अभी सक्सेस नहीं हुई है, बनी हुई तो बहुत सारी चीज़ें हैं,
0: काम चल रहा है,
1: चल रहा है, लेकिन
0: साइंस
1: है
0: काम
1: नहीं
0: कर रही है, लेकिन अभी
1: चीज़।
0: वो चीज़ नहीं है जो नेचुरल हमारा वो है,
1: हाँ,
0: जो पुतली है वो अभी उसका कोई विकल्प नहीं है,
1: विकल्प
0: वो
1: नहीं है।
0: उसका आदमी की बिल पावर रही या आदमी का दान ही वो काम आएगा,
1: हाँ,
0: इसीलिए शायद नेत्रदान महादान कह रहे हैं।
1: नेत्रदान माता उसका ये जागरूकता का ये चीज़ें हैं, ये आपकी 25 अगस्त से और 8 सितंबर, इतना लंबा टाइम दिया कि पब्लिक अवेयर हो जाए। तो हमने भी अपने के एम मेडिकल कॉलेज में इसकी सब गोष्ठी करी है, उसके ऊपर भाई इस तरीके से।
0: काम हो रहा है, आपको क्या लगता है सोसाइटी में अवेयरनेस तो
1: अभी
0: आई है?
1: अवेयरनेस नहीं
0: अभी
1: है।
0: तो टोटल बॉडी दान की भी बात हो रही है, उसमें आपका
1: हाँ
0: किडनी
1: देखो,
0: है, लिवर है, बहुत सारे होने, लेकिन आंखों का दान मुझे लगता है ट्रांसप्लांटेशन भी और उसका भी बहुत इजी हो गया है अब।
1: हाँ 1994 में एक्ट भी बन चुका है, लेकिन अभी कोई इतना हुआ नहीं है, सक्सेस नहीं हो रहा है,
0: लोगों में जागरूकता उतनी नहीं,
1: जागरूकता की कमी
0: उतनी
1: है,
0: नहीं आ रही है उसमें,
1: जागरूकता की कमी
0: जबकि
1: है। और
0: कोई इसमें खर्चा नहीं है, कोई
1: हाँ
0: वो नहीं है, बस थोड़ा सा समय से जानकारी दे दो, परिवार का सपोर्ट हो जाए, और बिल तो आदमी जिसने कर दिया है वो कह ही गया है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन
1: देखिए
0: परिवार का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट हो तो थोड़ा सा काम हो जाता है
1: हो
0: इसमें।
1: जाएगा। देखिए बिल्कुल, वर्ल्ड की बात भी नहीं, तो वर्ल्ड में तो अमेरिका इटली सबसे टॉप पे हैं, जो जो आई डोनेशन एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास का कंट्री है श्रीलंका, वो ले जाने पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता रहता है अपनी आई।
0: बताइए, ये सिर्फ अवेयरनेस की
1: और
0: बात
1: कितना
0: है?
1: छोटा सा श्रीलंका। हाँ
0: हाँ,
1: अवेयरनेस है, या वहाँ की वो है, कोई
0: लोग
1: नियम होगा ऐसा बना होगा, यहाँ के पब्लिक की सोच ऐसी हो गई है। हमारे यहाँ पे जिस दिन जागरूकता और बढ़ जाएगी, हो सकता है कोई ब्लाइंड ना रहे कॉर्निया की वजह से,
0: कॉर्निया की
1: मत
0: वजह
1: श्वेत पटल की वजह से।
0: तो अब चलते चलते थोड़ा सा बताइए कि जैसे किसी व्यक्ति की एक तो जन्मजात दृष्टि नहीं है, या किसी की किसी बीमारी की वजह से चली गई, किसी की दुर्घटना में चली गई, तो कौन से लोगों में ये सक्सेस हो जाता
1: एक
0: है?
1: तो चोट लगने पे ना जो सफ़ेद पटल है उसमें
0: हाँ
1: जख्म हो जाता है।
0: हाँ
1: अब जख्म तो आप दवाइयों से भर देते हैं, लेकिन उसके अंदर वो स्कार रह जाता है, उसी को हम कॉर्नियल ओपेसिटी कहते हैं, उससे उस मरीज को दिखता नहीं है। एक तो उन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी बच्चों में हो जाती है,
0: ध्यान नहीं दे रहे
1: ध्यान नहीं
0: हैं,
1: देते
0: धीरे
1: हैं,
0: धीरे करके
1: उसके
0: चल।
1: अंदर कॉर्निया का पूरा वो हो जाता है, उस केसेस में कर सकते हैं। कुछ जन्म से भी बच्चे जो हैं वो कॉर्नियल ओपेसिटी वाले ही पैदा होते हैं, जन्म से पेट से आते हैं वो,
0: फिर अच्छा,
1: तो उनमें बहुत ज़रूरी है। उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं देखा, अगर चोट
0: हाँ
1: वाले ने तो फिर भी अपना देख रखा, हम दूसरी आंख से भी काम कर सकते हैं। और जो पेट से आते हैं वो ज़्यादातर दोनों आँखों में होती है,
0: हाँ
1: तो इन लोगों के लिए
0: तो
1: बहुत
0: उनमें भी ये सक्सेस हो जाता है।
1: बिल्कुल सक्सेस तो सब में
0: हाँ,
1: ही
0: मतलब
1: है।
0: आंख तो है लेकिन वो
1: मैच
0: उसका लेंस काम नहीं कर
1: वो
0: रहा।
1: वाला लेंस हटा के
0: हाँ
1: दूसरे वाला, आपने जो दिया जो जिसने प्लेज वो करा था उसको लगा देते हैं, उसको दिखने लग जाता है, सब वो होती
0: अच्छा,
1: है
0: इसमें कोई उम्र का होता है कि किस
1: उम्र।
0: किस व्यक्ति की उम्र, किस व्यक्ति के
1: नहीं कोई इसमें उम्र का बार नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी भी उम्र का दान कर सकता है, 70 80 जो भी कर सकता है, 50 साल 40 साल का, कोई उम्र का कुछ नहीं है। हाँ भाई कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, रेबीज का कोई वो पेशेंट, सेप्टिसीमिया है, उस केस में नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैन बी ट्रांसफर हो सकती है
0: वो फिर
1: उसके।
0: उसके
1: अब
0: और
1: ब्लड
0: ज्यादा
1: ग्रुप का,
0: नुकसान हो।
1: मेरा तो RH पॉजिटिव है, RH नेगेटिव है, मैं तो नहीं दे सकता। नहीं भाई, किसी भी ब्लड ग्रुप का हो सब दे सकते हैं इसमें बहुत, लेकिन बस इच्छा कमी
0: इच्छा
1: है
0: हो,
1: या
0: जागरूकता हो,
1: जागरूकता।
0: सामाजिक एक वो हो, सहयोग हो, तो हम इस और ऐसे लोगों का जो वाकई में मतलब बात करने में भी ऐसा लग रहा है कि जिसके नजर नहीं है वो दुनिया को कैसे देखता होगा, कैसे पढ़ता होगा, कैसे समझता होगा, तो उसमें अगर कोई रोशनी आ जाए तो ये बड़ा पुण्य का काम, बड़ा समाज के लिए सार्थक काम, बड़े महत्व का काम है। तो इस नेत्रदान में जो डॉक्टर तनेजा हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि भाई आइए जुड़िए, और बिना सहयोग और बिना उसके तो कुछ
1: कुछ हो नहीं सकता, ये है इसमें सहयोग।
0: जन आंदोलन बने तो काम चले,
1: जन आंदोलन बने। अब जन आंदोलन तो सरकार तो अपने प्रयत्न कर ही
0: रही है, लेकिन समाज को आगे आना,
1: समाज को आगे आना।
0: तो श्रोता बंधु, आज हम बात कर रहे थे नेत्रदान पे, और कोई बहुत हमने साइंटिफिक बात नहीं की, लेकिन जागरूकता की बात है। ये जो अभी 25 से और 8 सितंबर तक का जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें इसीलिए है कि हम समझें, जाने, और हम किस तरीके से अपने जाने के बाद दुनिया को रोशन कर सकते हैं, दुनिया को कैसे आपकी आंखें फिर से आबाद रहेंगी, दुनिया देख पाएंगी, और एक दूसरे व्यक्ति के जिसके अंधेरा है जीवन में उसमें रोशनी ला पाएंगी, तो इस काम के माध्यम से हम फिर से जीवन में एक रोशनी ला सकते हैं। डॉक्टर तनेजा, आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा समेत समूचे ब्रज क्षेत्र में बने धार्मिक आध्यात्मिक माहौल और प्रशासन की तैयारियों पर मोहम्मद उमर कुरैशी के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
2: नगरी मथुरा समेत समूचा ब्रज क्षेत्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर योगेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति और आस्था के रंग में डूब गया है। मंदिरों की सजावट, भजन कीर्तन, शंख और घंटियों की गूंज और राधा कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की झांकियां सजाई जा रही हैं और देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन्मोत्सव की दिव्य छटा के साक्षी बनने के लिए पहुँच गए हैं। जन्माष्टमी केवल धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सव का पर्व नहीं है, ये भारतीय समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है और भक्ति भाव में सब भूलकर झूमते लोग इसी बात का प्रमाण हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे। उन्होंने न केवल यहां विकास की कई परियोजनाओं की सौगात दी बल्कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि हमारे मंदिरों, दर्शन और ज्ञान परम्परा में शामिल है।
3: विरासत केवल किसी भौतिक वस्तु में नहीं होती, विरासत हमारे मंदिरों में है, हमारी भाषा में है, हमारे साहित्य में है, हमारे संगीत में है, हमारी कला में है, हमारी दर्शन में है, गणित में है, विज्ञान में है, चिकित्सा में है, खगोल ज्ञान में है, हमारी लोक परंपरा में है और हमारी ज्ञान परंपरा में है। और इसीलिए डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया आयाम जोड़ा है कि विरासत भी और विकास भी, आस्था भी और आर्थिकी भी, यानी अर्थव्यवस्था भी, परंपरा भी और परंपरा के साथ साथ परिवर्तन भी।
2: मथुरा की जन्माष्टमी का आकर्षण पूरी दुनिया में है। हर बार यहाँ भक्ति के ऐसे रंग देखने को मिलते हैं जो न केवल अनूठे होते हैं बल्कि भक्तों को आनंद, आध्यात्म के नए स्तर पर ले जाते हैं। इस महोत्सव को भव्य बनाने के लिए इस बार अनेक प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से भक्तिमय माहौल को और दिव्य बनाएंगे। इसके साथ ही पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के

0: भव्य आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल श्री कृष्ण पहली बार पंचरत्नी विशेष पोशाक धारण करेंगे। साथ ही उत्सव के दौरान कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गौ द्वारा ठाकुर का अभिषेक किया जाएगा।
1: इस वर्ष भगवान पंचरत्नी पोशाक धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे और श्री ठाकुर जी कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होकर बहुत ही दिव्य और भव्य रूप में भक्तों को दर्शनीय होंगे। इस वर्ष जो संकल्प है वह गौ रक्षा राष्ट्र रक्षा, तो एक बहुत ही प्रमुख हमारा जो भाव है गौ रक्षा और गौ सेवा, यह इस वर्ष श्री की जन्माष्टमी का मुख्य संकल्प होगा।
0: समूचे ब्रज क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। विशेष सजावट लाइटिंग के साथ ही भगवान के श्रृंगार और भोग की व्यवस्था की जा रही है। यहां के साधु संतों में अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के जन्म को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। वृंदावन के ही रहने वाले भगवताचार्य रामविलास चतुर्वेदी कहते हैं कि यहां संत समाज इस महोत्सव की साल भर प्रतीक्षा करता है। इसका आनंद और अनुभूति अद्वितीय है।
2: हमारे ब्रजमंडल के सभी मंदिरों में भव्य और दिव्य सजावट की जा रही है तथा जितने भी हमारे मंदिर के मार्ग हैं उनको भी सजाया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से इस धरा धाम पर अवतार लेकर के समस्त जनमानस के कल्याण के लिए, समरसता के लिए, एकता के लिए तथा समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है, उसमें सभी संकल्पित होकर के अपने जीवन को भी उससे जोड़े। जय श्री कृष्ण।
0: जन्मोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने पर प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मथुरा में 129 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं और 24 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 16 वॉच टावर बनाए जाएंगे। पुलिसकर्मी इन टावरों से भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों की निगरानी की जा रही है। एडीजी आगरा जोन एसके भगत ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर मथुरा वृंदावन को 7 जोन और 35 सेक्टरों में विभाजित किया गया है।
3: कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई 7 जोन में और 35 सेक्टर लगभग, इनको इस पूरे क्षेत्र को विभाजित किया गया है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस, पीएसी, आरएएफ सभी कंपनियां डिप्लॉय की गई है और प्लस जो है फायर टेंडर, एसडीआरएफ सभी लोग जो है फोर्स प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो गई, कहीं कोई इशू ना रहे। बस ये हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो है श्रद्धालुगण जो आएंगे और भीड़ लगभग 10:30 बजे के आसपास रात्रि से बढ़ना शुरू होता है रात के 1 बजे तक। बार थोड़ा चेंज किया गया है कि होल्डिंग एरियाज बढ़ाए गए ताकि जो है श्रद्धालुगण को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और सुगमता से दर्शन।
0: सुरक्षा के साथ ही शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 25 प्रमुख चौराहों, 3 घाटों और उनसे जुड़े मार्गों पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। 17 प्रमुख स्थानों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। जन्मोत्सव का उत्साह और शहर का आध्यात्मिक माहौल उन्हें आनंदित कर रहा है। यहाँ दर्शन करने आई किरण बताती हैं कि सबका मन होता है कि एक बार यहाँ आए और जन्मोत्सव में शामिल हो। इस बार व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं।
4: पहले की अपेक्षा यहाँ पर बहुत धूमधाम है, श्रद्धालु अभी से आ रहे हैं यहाँ पर। सबका मन होता है एक बार जन्मभूमि के दर्शन जरूर करें। हम भी इसीलिए आए हैं कि यहाँ भगवान के एक बार दर्शन जरूर करें। बहुत अच्छी तैयारी हो रही है और बहुत ही भीड़ है यहाँ पर।
0: श्रद्धालु इस दिव्य महोत्सव को लेकर जहां भक्ति भाव में डूबे हैं, वहीं प्रशासन भी उनकी सुविधा और उनकी यात्रा को यादगार बनाने के पूरे प्रयास कर रहा है। मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने बताया कि आयोजन के दौरान मथुरा वृंदावन प्लास्टिक मुक्त रहेगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि सजावटी सामग्री और अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग न करें।
5: पूरे मथुरा, पूरे ब्रज मंडल में, पूरे वृंदावन मथुरा में पूरी पवित्रता के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन सर्वाधिक रहेगा वहाँ पे पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रहे और पर्याप्त डेकोरेशन रहे, सेल्फी पॉइंट्स रहे, चौराहे के साथ सज्जा रहे, उसी हेतु निरीक्षण किया गया है और हमारी पूरी टीम विगत 25 दिन से अच्छे से कार्य कर रही है।
0: श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए जलकल विभाग ने भी व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। मथुरा नगर निगम के महाप्रबंधक जल अनवर मोहम्मद ख्वाजा ने बताया कि मंदिर परिसर के आसपास और परिक्रमा स्थलों पर 53 मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रमुख स्थानों पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 186 पानी के टैंकर लगाए जाएंगे। साथ ही भीड़ वाले क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पेयजल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
6: जन्माष्टमी के पर्व पर जैसा कि विदित है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से मथुरा वृंदावन में आते हैं और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल व्यवस्था और

0: और उनके सीवरेज और अन्य सुविधाओं के लिए जल कल विभाग द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित प्रति वर्ष की जाती है। और इस वर्ष भी जल आपूर्ति के लिए 186 पानी के टैंकर्स जिनकी जगह चिन्हित कर ली गई है, और इसके साथ साथ हमारे मोबाइल टॉयलेट्स हैं जिनमें लोगों को सुविधा प्रदान की जाती है। इस बार 55 नग मोबाइल टॉयलेट्स विभिन्न स्थानों को लगे रहेंगे, जिनमें इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है उनको भी चिन्हित कर लिया गया है और उन पर भी मोबाइल टॉयलेट्स और टैंकर्स की व्यवस्था रहेगी।
1: जन्माष्टमी के महापर्व को लेकर प्रशासन ने जहां खास तैयारियां की है, वहीं इस महोत्सव से स्थानीय दुकानदार, होटल कारोबारियों और व्यवसायियों को भी लाभ मिल रहा है। कान्हा के लिए पोशाक बनाने वाली सीमा बताती हैं कि बड़े स्तर पर उन्हें ऑर्डर मिले हैं। अलग अलग और आकर्षक पोशाक बनाने के लिए भक्ति, समर्पण भाव और पूरी मेहनत के साथ उनकी टीम काम कर रही है।
2: जन्माष्टमी की ही समय बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही है। सारे मंदिरों की पोशाक एंड ठाकुर जी की पोशाक, सब तरह की पोशाकें चल रही है। इस समय व्यापार तो बहुत अच्छा इस समय देखने को मिल रहा है। कड़ी मेहनत के साथ सभी में लगे हुए हैं पूरा टाइम दे करके। इससे ही पता चलता है कि हमारा मार्केट बहुत अच्छा इस समय चल रहा है।
1: मथुरा में जन्माष्टमी के दौरान दिखाई देने वाली श्रद्धालुओं की विविधता भारत की सांस्कृतिक एकता की झलक प्रस्तुत करती है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और जीवन मूल्यों का उत्सव भी है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी यही है कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए और प्रेम और सद्भाव के साथ समाज को आगे बढ़ाना चाहिए।
3: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में बने धार्मिक आध्यात्मिक माहौल और प्रशासन की तैयारियों पर मोहम्मद उमर कुरैशी के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
4: अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी
5: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। आज इस कार्यक्रम में विषय है शौचालय और पर्यावरण। जानकारी दे रही हैं नेहा प्रधान।

हमारे देश की अधिकतम आबादी गांवों में ही निवास करती है। इसके बावजूद ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे गांव, कस्बे सबके हाथों में मोबाइल तो नजर आ जाते हैं, लेकिन जब बात घर में शौचालय निर्माण की आती है तो परिणाम मिलता है जीरो। ऐसा क्यों है कि हम नई तकनीकों को अपनाने में तो शर्म महसूस नहीं करते, फिर अपने और अपने पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने के प्रति इतनी ज्यादा लापरवाह क्यों है? आप और हम सब जानते हैं कि घर में भी यदि कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है और लंबे समय तक उसकी सफाई नहीं करें तो मच्छरों को पनपने का अवसर मिल जाता है, तो फिर हमें खुले स्थानों और खेतों में शौच जाने के नुकसान के बारे में जानकारी का अभाव क्यों है? इसी कारण बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इन पर बैठी मक्खियां हमारे खाने को भी दूषित कर देती हैं और दुर्गंध से वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खेतों में फसलें भी इनसे दूषित हो जाती हैं। इस कारण फल और सब्जियां पोषक तत्वों की जगह दूषित और विषैले तत्वों से भरपूर होती हैं। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन देखिए, इतनी जानकारी देने के बाद भी कई लोगों द्वारा अभी भी खुले में ही शौचालय का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन हमारे ग्रामीण भाई बहनों ने भी कमर कस रखी है। हम अपना ही नुकसान नहीं देख पा रहे हैं। खुले में शौच से हम हमारे पर्यावरण का ही नुकसान कर रहे हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी बल्कि मिट्टी के कारण नदी तालाब भी प्रदूषित हो रहे हैं। पानी में दूषित तत्व घुलकर उसे पीने योग्य नहीं रहने देते। इस पानी को पीने से हम बीमार हो जाते हैं। फिर चाहे हम उस पानी को कितना ही स्वच्छ करने का प्रयास करें, वह पूरी तरह कीटाणु रहित नहीं हो पाता। इसी प्रकार अगर मिट्टी दूषित हो जाती है तो यह दूषित तत्व लंबे समय तक पर्यावरण को

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। आज इस कार्यक्रम में विषय था शौचालय और पर्यावरण। जानकारी दे रही थी नेहा प्रधान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। श्रोताओ, हम आपको पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 11:10 से हम आपको सुनवाएंगे मंदिर श्री द्वारिकाधीश एवं श्री कृष्ण जन्म स्थान के भागवत भवन से कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। मंदिर श्री द्वारिकाधीश से आंखों देखा हाल सुनाएंगी डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल। श्री कृष्ण जन्म स्थान के भागवत भवन से आंखों देखा हाल आपको सुनवाएंगे श्रीयुत श्री कृष्ण और देश दीपक मिश्रा। तकनीकी सहयोग अशोक कुमार सिंह, सुजीत कुमार प्रसाद, नागेंद्र कुमार शर्मा और प्रेम सिंह का होगा। प्रस्तुति सहयोग संजीव कुमार व्यास और डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत का होगा। तकनीकी संयोजन पूर्णमल मीणा का होगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे ओम प्रकाश सिंह। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज इस कार्यक्रम में विषय है श्रम शक्ति की उपयोगिता और गांधी जी के विचार।

लोग मुझसे पूछते हैं कि मशीनों का विरोध करके क्या मैं प्रगति की रफ्तार उलट देना चाहता हूं? क्या मैं मिलों के बजाय चरखा, करघा तथा रेलों के बजाय बैलगाड़ी का युग लाना चाहता हूं? क्या मैं मशीनों का नामो निशान मिटा देना चाहता हूं? इन प्रश्नों के लिए मेरा उत्तर है कि हाँ। यदि मशीनें पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं, तो न तो इसे मैं दुर्भाग्य ही समझूंगा, न उनके लिए एक बूंद आंसू ही बहाऊंगा। दुनिया के लोग आए दिन नई नई ईजाद होने वाली इन निर्जीव मशीनों की पूजा करते करते ऊब चुके हैं। मशीनों का प्रयोग करके हम मानव की काया रूपी अनमोल और सजीव मशीन को निकम्मी और बेकार किए दे रहे हैं। यह एक ईश्वरीय नियम है।

कि शरीर का पूरा उपयोग किया जाए। इस नियम की हम अवहेलना नहीं कर सकते। चरखा इस शरीर यज्ञ का पावन प्रतीक है। जो व्यक्ति बिना शरीर यज्ञ संपन्न किए कुछ खाते हैं, वे एक प्रकार से चोरी करते हैं। इस यज्ञ का परित्याग करके हम देशद्रोही भी ठहरते हैं और सुख समृद्धि की देवी लक्ष्मी के आने का द्वार ही बंद कर देते हैं। भारत के सामने दो रास्ते खुले हैं। एक रास्ता जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला पश्चिमी सभ्यता का है, दूसरा रास्ता सत्यमेव जयते के सिद्धांत वाला अपनी पूर्वी सभ्यता का है, जिसमें शक्तिशाली और कमजोर दोनों को न्याय पाने का समान अधिकार है। इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा हम मजदूर समस्या के समाधान को लेकर ही कर सकते हैं। यहां प्रश्न ये उठता है कि मजदूरी बढ़वाने के लिए क्या हिंसा का सहारा लिया जाए? हिंसा से भले ही सफलता निश्चित दिखाई देती हो और उनकी मांगें कितनी भी जायज क्यों न हों, फिर भी मजदूर हिंसा की बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हिंसा का रास्ता छोटा और सरल होते हुए भी कांटों भरा है और आगे चलकर दुखदाई सिद्ध होने वाला है। संघर्षों का सहारा लेने वाले ही संघर्षों से हानि भी उठा जाते हैं। बात बात में तलवार निकालने वाले तलवार से ही मारे भी जाते हैं। इसी प्रकार तैराकों की मृत्यु भी अक्सर डूबकर ही होती है। यूरोप को देखिए, वहां कोई सुखी नहीं दिखाई देता, क्योंकि कोई भी अपने से संतुष्ट नहीं है। श्रमिक पूंजीपतियों का विश्वास नहीं करते और पूंजीपति श्रमिकों पर भरोसा नहीं करते। दोनों ही अपनी अपनी शक्ति के मद में चूर रहते हैं, लेकिन शक्ति तो बैलों में भी होती है और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। हर गति को प्रगति नहीं कहा जा सकता। हम नहीं कह सकते कि यूरोप के लोग सही मायनों में तरक्की कर रहे हैं। उनके पास संपत्ति का होना ही यह सिद्ध नहीं करता कि वे नैतिकता व सदाचार के गुणों से भी पूर्ण हैं। अब प्रश्न यह है कि अपनी स्थिति सुधारने के लिए मजदूर क्या करें? अपनी शक्ति का आभास हो जाने पर यदि वह शक्ति प्रदर्शन तथा हिंसा का सहारा लेते हैं, तो यह उनके लिए आत्मघाती होगा ही, देश के उद्योगों को भी क्षति पहुंचेगी। इसके विपरीत, यदि वह न्याय पथ पर दृढ़ रहकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो उनकी अपनी जीत तो होगी ही, वह अपने मालिकों को भी सुधार देंगे, जिसके फलस्वरूप मालिक और मजदूर एक ही परिवार के सदस्य बन जाएंगे तथा उद्योगों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने की संभावना नहीं रहेगी। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के प्रिय भजन।

अभी तक आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। आज इस कार्यक्रम में विषय था श्रम शक्ति की उपयोगिता पर गांधी जी के विचार। आज की प्रस्तुति आगरा केंद्र से थी।

श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 11:10 से हम आपको सुनवाएंगे मंदिर श्री द्वारिकाधीश एवं श्री कृष्ण जन्म स्थल के भागवत भवन से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। मंदिर श्री द्वारिकाधीश से आंखों देखा हाल सुनाएंगे डॉक्टर नृत्य गोपाल और डॉक्टर मीनू खरे। श्री कृष्ण जन्मस्थल के भागवत भवन से आंखों देखा हाल सुनाएंगे श्रीयुत श्री कृष्ण और देश दीपक मिश्रा। प्रस्तुतकर्ता होंगे ओपी सिंह। प्रस्तुति सहयोग संजीव कुमार व्यास और डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत का होगा।

दिन में 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे संगीत रूपक कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेखक होंगे डॉक्टर नटवर नागर, प्रस्तुति विजय सिंह नौलखा की होगी, वाचन स्वर अंजू सूद और देवराज कृष्ण दीक्षित के होंगे।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम श्री कृष्ण के विविध आयाम। स्वर और आलेख विजेता चतुर्वेदी का है, संयोजन ओपी सिंह का।

0: भगवान श्री कृष्ण भारत की आत्मा हैं, भारत के हृदय हैं। कहीं गोविंद हैं, तो कहीं वासुदेव, कहीं वो वंशीधर और चक्रधर हैं, तो कहीं वो गिरधारी। कृष्णाट्टम हो या भगता, कथकली हो या मणिपुरी, गरबा हो या रास, कृष्ण सबके हैं और कृष्ण सभी में है। किसी को गीता गायक की भंगिमा भाई, तो किसी को कंस वध की। किसी का मन रास लीला में रमा, तो कोई उनकी माखन चोरी लीला पर मुग्ध हुआ। लेकिन कृष्ण तो सबके हैं। भगवान श्री कृष्ण को आप हर जगह व्याप्त पाएंगे, फिर चाहे वो साहित्य हो, कवित्व हो, मूर्तिकला हो, संगीत हो, गायन वादन, सभी आयामों में भगवान श्री कृष्ण हैं। आप चाहें तो कृष्ण को रस कहें या रस को कृष्ण कह दें। डॉक्टर राजेंद्र रंजन कृष्ण की चर्चा करते हुए कहते हैं,
1: संपूर्ण भारतीय साहित्य पर श्री कृष्ण का प्रभाव है। कोई भी प्रांतीय भाषा हो, कोई भी जनपदीय भाषा हो, और इतना ही नहीं, अंग्रेजी इत्यादि जो विदेशी भाषाएं हैं, कृष्ण पर उन भाषाओं में भी लिखा गया है। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग केवल साहित्य की बात करते हैं, सच्चाई ये है कि कृष्ण ऐसा व्यक्तित्व है कि न केवल साहित्य पर, चित्रकला पर, नृत्य कला पर, गायन पर, वादन पर, स्थापत्य में, मूर्तिकला, कोई ऐसा जीवन का परिप्रेक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको लेकर हम ये कहें कि उस पर श्री कृष्ण का प्रभाव नहीं।
0: अलग अलग प्रदेशीय भाषाओं में अपनी अपनी रुचि और अपने अपने स्वर और ताल के साथ कृष्ण की लीलाओं का गायन किया गया है, परंतु वे हैं वही कृष्ण। वही कृष्ण वे अपने अनेक रूपों में अनेक संदेश देते हैं, और जब उन्हें योगीराज रूप में स्वीकारा जाए तो वे आज के युग के लिए सबसे उपयोगी संदेश देते हैं। विपरीत परिस्थितियों को अपने वश में करना, फिर चाहे वो लोभ, मोह, क्रोध, वासना, काम कुछ भी हो, उसे अपने वश में करना। जिन्होंने स्वयं कामदेव, जो सबको अपने वश में करते हैं, उन्हें भी अपने वश में कर लिया और मदन मोहन कहलाए। श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, राग विराग से पूर्ण, विपरीत स्थितियों में सामान्य रहने की प्रेरणा देती हैं। विक्रांतिकारी और दूरदर्शी होने के साथ साथ महाभारत के प्रतिपाद्य हैं। ओडिशी नृत्यांगना कुंजलता मिश्रा भक्त और भगवान का संबंध संगीत को ही बताती हैं।
2: भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में एक प्रेम के संबंध है, वो संगीत ही इसको बांध के रखता है। भक्तों के बीच में भी, भक्त और भगवान के बीच में ऐसे ही संबंध है, और इसी संबंध में जो जिस भाव में भगवान को चाहता है, लेकिन संगीत के ही माध्यम से उसको प्रकाश कर पाता है, अदरवाइज

0: इस नहीं, रामायण की गाथा हो, महाभारत की है, वो छंद चौपदी, इसके माध्यम से कि शैल, संगीत के शैल के माध्यम से ये संभव हो सकता है। लेकिन एक संगीत एक आनंद है और नृत्य एक इसका रूप है, और संगीत भक्त और भगवान के बीच में जो भाषा है वो है संगीत। और इसको अलग करने के बाद ना भक्ति संपूर्ण है ना संगीत संपूर्ण है।
1: योगीराज भगवान कृष्ण जीने की कला सिखाते हैं, जीवन वो जो अपने से पहले दूसरों की सेवा को तत्पर हो, जो किसी को कष्ट में ना देख पाए, किसी की परेशानी देख व्याकुल हो उठे। समाज सेविका डॉक्टर लक्ष्मी गौतम बताती हैं,
2: सेवा भाव की यदि हम बात करें तो श्री कृष्ण हमारे आराध्य, हमारे कान्हा, ब्रज वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर राक्षसों से युद्ध करके गोपियों से माखन का दान लेकर, माखन और दही और दूध का दान लेकर उन्होंने इस जिस संदेश को दिया वो हमारे जीवन में एक सेवा के भाव को ही प्रेषित करता है। भगवान कृष्ण के जन्म को देखें तो जन्म लेते ही उन्होंने देवकी और वसुदेव जो उनके माता पिता थे उनको कंस के कारागार में बेड़ियों से मुक्त कर सेवा का ही संदेश तो दिया है कि माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके प्रति हमारा क्या भाव है और उनको हम अपने भाव से, अपनी सेवा से कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, कैसे यदि वो कोई कष्ट में है तो उस कष्ट से कैसे मुक्त कर सकते हैं।
1: भगवान श्री कृष्ण किसी एक जगह पर सीमित नहीं है, उनके जीवन को यदि हम देखें तो इतना कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं में से एक पक्ष है प्रकृति। प्रकृति को मान दिलाने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण लोक नायक के रूप में स्थापित हुए। चाहे कालिया नाग के विष के प्रभाव से यमुना को मुक्त कराने का कार्य हो, अथवा इंद्र का दंभ चूर करने के बाद गोप ग्वालों के द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा कराना हो, गौपालन, गौ संवर्धन एवं उत्पादन करने जैसे कार्यों को भगवान श्री कृष्ण ने महत्व प्रदान किया। कृष्ण प्रकृति प्रेमी थे। कृष्ण प्रकृति के कितने बड़े सचेतक थे इसका पता तो उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रिय वस्तुओं के अवलोकन से ही चलता है। उनकी प्रिया कालिंदी, गले में वैजंती माला, सिर पर मयूर पंख, अधरों पर बांस की बांसुरी, कदंब के पेड़ की छांव और उनकी प्रिय धेनु, ये सब इस बात की ओर इंगित करते हैं कि श्री कृष्ण पर्यावरण के सच्चे हितैषी और संरक्षक थे। यानी भगवान श्री कृष्ण से कुछ सीखने के लिए एक और अध्याय हमारे लिए जुड़ गया है, तो क्यों ना हम भी उनके जीवन से प्रकृति को सहेजने और उसके संवर्धन की सीख लें। हमारे साहित्य की आत्मा और उसका भाव कृष्ण ही तो है। साहित्यकारों कवियों की प्रेरणा भगवान कृष्ण ही है, जिसे उन्होंने अपनी लेखनी में उतार दिया। ये किसी कालखंड में विभाजित नहीं है, बल्कि ये तो सर्वज्ञ है।
3: काल की गणना करूं, उसको देखूं मैं उसके लिए, लेकिन उसके विस्तार और उसकी व्यापकता को देख करके चकित जरूर हूँ उसका। क्योंकि केवल आप सुधा जी की बात करें, अरे सुधा जी की बात करिएगा, लेकिन उड़िया की भी बात करिएगा, जिसने सारे हिंदुस्तान को अपने में, अपने सूत्र में बांध लिया है, जो सब में समा गया है और सब उसमें समा गए हैं। ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा भाव है जो भाव कृष्ण में नहीं? लीला भाव आप देखिएगा, श्रृंगार भाव आप देखिएगा, प्रेम भाव आप देखिएगा, वीर भाव आप देखिएगा, हास्य भाव आप देखिएगा, कौन सा भाव ऐसा नहीं है? तो श्री कृष्ण को विद्यानिवास मिश्र जी कहा करती है, भारत भाव मूर्ति, संपूर्ण भारतवर्ष का जो भाव है वो इकट्ठा हो गया, वो पूंजीभूत हो गया और हम सब लोग उसको मिल करके कहते हैं ये श्री कृष्ण है, भारत भाव रूप श्री कृष्ण। इसलिए केवल हिंदी साहित्य की बात नहीं है, आप वहां से चलें, आप सूदास जी से चलें, सूदास जी से पहले से चलें, है ना। अब देखो गीत गोविंद संस्कृत, अब हिंदी की बात तो बाद में आएगी, संस्कृत का ही साहित्य को आप देखिएगा। अब वही जो है कृष्ण है हरिऔध जी, उनको अपने तरीके से प्रेपरवास में लिख रहे हैं, द्वापर में मैथिली शरण गुप्त अपने हिसाब से लिख रहे हैं, आधुनिक आधुनिक युग में उसका आधुनिकता का समावेश करके लिख रहे हैं। और सूरदास

0: तुलसीदास जी का संपूर्ण जो लोकमानस है ब्रज का, संपूर्ण ब्रज का जो गोप जीवन है, वो संपूर्ण ब्रज का गोप जीवन जो है वो सुसागर में समाया हुआ है। इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है युग के साथ जी रहा है।
1: कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही कष्टों से भरा था, लेकिन वो कष्टों को देखकर विलाप न करते, डरते नहीं, निराश न होते। उनकी बाल लीलाएं हमें परेशानी से डटकर लड़ने का संदेश देती हैं।
2: कृष्ण के हम बाल लीलाओं को देखें तो पाएंगे कि जब कृष्ण मात्र 6 दिन के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया। पूतना एक सुंदर स्त्री के रूप में, माँ के रूप में भगवान कृष्ण के सामने आई, तो भगवान कृष्ण ने उनका स्तन पान कर उस जहर को खींच लिया, जिस जहर का पान कराकर वो उनको मृत करना चाहती थी। और मैंने जैसा पढ़ा है या जैसा सुना है, उससे प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण की स्तन पान के बाद में जब पूतना का वध हुआ तो उसके शरीर से एक दिव्य गंध निकली, क्योंकि भगवान ने जिस के शरीर को स्पर्श किया हो, जिसका दुग्ध पान किया हो, स्वाभाविक है उसके एक दिव्य गंध का प्रसारण हुआ। तो ये भगवान का एक दिव्य स्वरूप था। भगवान कृष्ण ने और भी राक्षसों का वध किया अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से, तो उसका एकमात्र यही प्रयोजन था कि वो अपनी लीलाओं के माध्यम से ब्रज में रहने वाले बहुत ही सरल सहृदय ग्वाल बाल गोपियों को उन राक्षसों के आतंक से मुक्त कराएं, जिनके आतंक से वो व्यथित थे, और उन राक्षसों का वध करके, खेल खेल में ही, क्रीड़ा में ही उन राक्षसों का वध करके उन्होंने वो एक सामाजिक संदेश प्रेषित किया।
1: समाज के विभिन्न आयामों में कृष्ण ने विभिन्न संदेश दिए हैं। हमें अपने जीवन में कृष्ण का कौन सा भाव लाना है, ये तो हम पर ही आश्रित है। ओडिशी नृत्यांगना कुंजलता मिश्रा कृष्ण को संगीत और नृत्य के भाव में पाती हैं।
3: भगवान के नाम जपने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान में ही लीन होने के लिए संगीत के अलावा कुछ संभव नहीं है। जो हमारे साधना का उद्देश्य है वो वही है, और उसके साथ साथ कला को बचाने की क्रिया हम लोग करते हैं। लेकिन असली सारे कलाकारों का असली लक्ष्य जो होता है भक्ति होता है, और अपने आराध्य को पाने का यही अंतिम इच्छा होता है।
1: विरोधी परिस्थितियों में भी जो चित्त को शांत रखे वही योग है। भगवान श्री कृष्ण को योगीराज कहा गया है, क्योंकि वे काम के अधीन नहीं, काम उनके अधीन है, लोभ के अधीन नहीं, अपितु लोभ उनके अधीन है, क्रोध के अधीन नहीं, बल्कि क्रोध उनके अधीन है। योगीराज कृष्ण ने इसी तरह से किस प्रकार से परिस्थितियों को हम अपने अधीन कर सकते हैं, ये हम कृष्ण के जीवन से ही सीख सकते हैं। बताते हुए आप हैं डॉक्टर राजेंद्र रंजन।
0: कृष्ण के संदेश जब भी निकले, चाहे वो उद्धव के प्रति थे, चाहे वो अर्जुन के प्रति थे, उन सारे संदेशों में अब वो मित्रता का संदेश देखिएगा सुदामा के साथ, वो मित्रता का संदेश दे रहा है। तो महात्मा गांधी ने तो लिखा है कि जब जब मुझ पर विपत्ति आई, जब जब मैं विपत्तियों से घिरा, जब जब मेरे सामने चिंताएं उभर के आई, मैं गीता माता की गोद में जाकर के बैठ गया, मुझे रास्ता निकला। तो बात यह है कि श्री कृष्ण को समझने की संदर्भ के साथ अपने जीवन से जोड़ने की जरूरत है, और युवक हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो वो युवक था, उसका संदेश तो युवा संदेश या गीता का संदेश तो उसी समय का है, युद्ध का संदेश है। जब वो कहता है मां मनुस्मर युद्ध च उत्तिष्ट कौंतेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करने वाला होकर के कमर कस में खड़ा हो जा। युद्ध युवक के लिए इससे बड़ा संदेश और क्या होगा, युद्धाय कृत निश्चय शुद्धम हृदय दुर्बल्यम चोत्तिष्ट परम तप, ये शुद्ध हृदय की दुर्बलता, हृदय की जो कुंठाएं हैं, जो निराशा की कुंठाएं हैं, इनको छोड़ करके जीवन का युद्ध है, जीवन का संघर्ष तेरे सामने है, उसको
1: श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति न होकर युग पुरुष थे। कृष्ण का गीता ज्ञान समस्त मानव जाति एवं सभी देश काल के लिए पथ प्रदर्शक था, है और रहेगा।

श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम श्री कृष्ण के विविध आयाम। स्वर और आलेख विजेता चतुर्वेदी का था, संयोजन ओपी सिंह का था।

श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 11:10 से हम आपको सुनवाएंगे मंदिर श्री द्वारिकाधीश एवं श्री कृष्ण जन्म स्थल के भागवत भवन से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल।

भवन से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल, मंदिर श्री द्वारिकाधीश से आंखों देखा हाल सुनाएंगे डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल। श्री कृष्ण जन्मस्थल के भागवत भवन से आंखों देखा हाल आपको सुनवाएंगे श्री युत श्री कृष्ण और देश दीपक मिश्रा। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आइए सुनते हैं संगीत रूपक कृष्णम बंदे जगत गुरुम। लेखक हैं डॉक्टर नटवर नागर, प्रस्तुति विजय सिंह नौलखा की है, वाचन स्वर देवराज कृष्ण दीक्षित और अंजू सूद के हैं।

तीनों लोकों से निराला ब्रजधाम, 84 कोस की परिधि में रचा बसा ब्रजधाम, वंशी की धुन पर कल कल निनाद करती श्री यमुना, सघन कुंजों की छांव और साधना की स्थली ब्रज भूमि, ये ब्रज की ही महिमा है कि समस्त तीर्थ ब्रज में ही निवास करना चाहते हैं।

ब्रज की महिमा का गायन ऋषियों और मुनियों के साथ ही अष्ट छाप के कवियों की वाणी की गूंज है, जिसके केंद्र में स्थित है योगीराज भगवान श्री कृष्ण।

0: ब्रज की पावन रज से नाता जोड़कर अनेक संतों, महंतों और कवियों ने अनेक रचनाएं की जो आज भी हर ब्रजवासी को आनंदित करती है।
1: भगवान श्री कृष्ण का जीवन सर्वांग संपूर्ण जीवन रहा है। उनकी हर लीला प्रेरणा का स्रोत रही है, जिनका रहस्य आत्मरूप से अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी आत्मिक सुख और आध्यात्मिक बल जागृत करने का पर्व है।
0: भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जगत को अपनी लीलाओं के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाने का संदेश दिया। उनकी समस्त लीलाएं न केवल हृदय को आनंदित और आह्लादित करती हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व को सामाजिक मूल्यों के साथ जीवन जीने और अन्याय का प्रतिरोध करने का संदेश भी देती हैं।
1: काशनी गुरु श्री शरणानंद जी महाराज अपने उद्गार में भगवान श्री कृष्ण को विश्व गुरु और उदार ठाकुर के रूप में संबोधित करते हैं।
2: भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, तो समग्र विश्व में अपने अपने भांति से, अपने अपने प्रकार से श्री कृष्ण जन्मोत्सव और तदनंतर नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि विचार करें तो जो हर एक को अपनी ओर खींचे उसे कृष्ण कहते हैं। कर्षदीति कृष्ण, तो ऐसा सरल ठाकुर सिवाय श्री कृष्ण के और कोई नहीं है।

0: कि श्री कृष्ण उत्सव है, उमंग है, रस है, प्रेम है और जीवन का सत्व होने के साथ साथ नैसर्गिकता के साथ संगीतमय वंशी की तरंगों के वाहक भी हैं।
1: भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्म लीला और क्रीड़ा भूमि ब्रज वसुंधरा का महिमा मंडन अकथनीय है। उनके रूप अनंत हैं, लीलाएं अनंत हैं। उनकी समस्त लीलाएं मन भावनी और लोक रंजनी और भय भंजनी रही हैं।
0: भगवान श्री कृष्ण की हर लीला ने दिया प्रभु को एक अलग नाम, कहीं मोहन तो कहीं श्याम। ये सभी लीलाएं उनकी 16 कलाओं वाले अवतारी लोकनायक रूप की अभिव्यक्ति हैं।
1: श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रज के गीतों, लोक गायन और लोक विधाओं में श्री कृष्ण के विविध स्वरूपों, संस्कारों और लीलाओं का विविध ऋतुओं और विविध कालखंडों के अनुसार गायन किया जाता है।

वृंदावन और गोवर्धन सहित संपूर्ण ब्रज मंडल में श्री कृष्ण के भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। चारों ओर श्री कृष्ण के जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है।

मथुरा जनपद का कोई मार्ग ऐसा नहीं है जहां कृष्ण भक्ति की पावन कलिमल हारिणी धारा उद्वेलित न हो रही हो। संपूर्ण ब्रजभूमि नव परिणीता के समान सजी हुई है।

0: आठवें मनु वैवस्वत के मनवंतर में 28वें द्वापर में यदुवंशी क्षत्रियों के चंद्र वंश में वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था।
1: 3118 ईस्वी पूर्व अर्थात 5134 वर्ष पूर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि को 7 मुहूर्त व्यतीत हो जाने के पश्चात 8वें मुहूर्त में सबसे शुभ लग्न में श्री कृष्ण का अवतार हुआ।
0: उस समय रोहिणी नक्षत्र था और रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती योग बन रहा था। सभी शुभ ग्रहों की लग्न पर दृष्टि थी।
1: श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी मथुरा के अत्याचारी राजा कंस की बहन थी।
0: कंस को एक आकाशवाणी द्वारा ये ज्ञात हो चुका था कि वासुदेव देवकी की 8वीं संतान के हाथों उसका वध होगा।
1: मृत्यु से बचने के लिए कंस ने वसुदेव देवकी को अपने कारागार में बंदी बना लिया और उनके नवजात शिशुओं की हत्या करने लगा।
0: कंस के डर से अपने 8वें नवजात शिशु को वसुदेव ने यमुना पार गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में ही उस बालक का पालन पोषण नंद यशोदा ने किया।

0: बालक का नाम कृष्ण रखा गया। नंद और यशोदा श्री कृष्ण के पालक माता पिता हुए।
1: श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही ऐसे ऐसे कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे।
0: बालक कृष्ण ने अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नामक राक्षसी का वध किया। तदुपरांत शक्टासुर, तृणावर्त आदि दैत्यों का वध किया।
1: कालांतर में राक्षसों के उपद्रव से तंग होकर नंद ने गोकुल छोड़ दिया और एक सुरक्षित पर्वत पर नंद गांव बसाकर श्री कृष्ण और अपने परिवार सहित वहीं रहने लगे।
0: नंद गांव में रहकर भी श्री कृष्ण ने गौचारण, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि अनेक लीलाएं की। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया।
1: कंस वध के उपरांत कंस के श्वसुर मगध नरेश जरासंध ने श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किए।
0: इन आक्रमणों से ब्रज का विध्वंस होते देख विवश हो श्री कृष्ण ने ब्रज छोड़ दिया और सुदूर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के मध्य द्वारिकापुरी बसाकर अपना राज्य स्थापित किया।
1: अब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के नाम से विख्यात हुए। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया और अर्जुन का सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया।
2: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।

0: श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है जो संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसी उपदेश के कारण श्री कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान दिया जाता है।
1: 124 वर्ष की आयु पूर्ण कर श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया।
0: अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। तभी से पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ।
1: परीक्षित ने श्री कृष्ण के पौत्र

0: ब्रजनाभ को ब्रज का राज्य सौंपा। ब्रजनाभ ने मथुरा में श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण करवाया।
1: ब्रज में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष भर ब्रजवासी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की प्रतीक्षा करते हैं।
0: वहीं पुरुषों का योगदान भी इस अवसर पर महत्वपूर्ण होता है। बताते हैं ब्रजेश श्रीवास्तव।
2: कृष्ण का जन्म तो ब्रजमंडल में ही संपूर्ण विश्व के लिए एक अद्भुत देन है और उसका संपूर्ण विश्व जो है उसका जन्मोत्सव मनाता है। हम लोग भी अपने घर की सभी सजावट करते हैं, बाहर झाड़ लगाते हैं और मोहल्ले में भंडारा करते हैं जिसमें बाहर से आए हुए श्रद्धालु अपना जो है व्रत कर सके, उनके लिए कूटी हुई पकौड़ी और लगाते हैं आलू और मखाने की खीर वगैरह। हम लोग झांकी लगाते हैं घर में, लोग झांकी के दर्शन करने आते हैं, डिफरेंट टाइप की रोज रोज नई झांकी लगाते हैं। और इसके अलावा हम लोग ये चाहते हैं कि कृष्ण का जन्म एक अद्भुत हर साल अलग अलग तरीके से लगे, हमें हर साल लगे कि हमने कुछ नया किया है भगवान के लिए, तो उस तरह के नया प्रयास करते हैं। और सारे संपूर्ण विश्व में कृष्ण का जन्म विभिन्न तरीके से मनाया जाता है जो कि अवर्णनीय होता है। तो जितने भी लोग उस समय आते हैं सब आते हैं गोप गोपी के रूप में, इस समय भाग लेते हैं, सब चाहते हैं उनको उसका प्रसाद मिले, इसलिए हम सब चाहते हैं कि उनका प्रसाद सबके पास पहुंचे, इसलिए जो भी हो सकता है वो हम संपूर्ण प्रयास करते हैं। लोगों में बहुत उत्साह रहता है, बाहर से आने वाला व्यक्ति तो कृष्ण जन्म में ही खुशी जाहिर करता है और बहुत भीड़ रहती है बाजार में, क्योंकि अपन तो ये चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कैसे भी एक क्षण हम आनंद कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव का एक क्षण भी अगर उन्हें मिल जाए देखने को तो वो अपने आप को अधन्य मानते हैं।

0: ब्रज में जन्माष्टमी की रात को 12 बजे घर घर में खीरा में से बाल कृष्ण को प्रकट करने की परंपरा है। जन्म के उपरांत बाल कृष्ण का पंचामृत अभिषेक होता है। जन्माष्टमी महोत्सव का आकर्षण केंद्र रहता है मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं प्रभु के दर्शन हेतु। इस उत्सव की आयोजना जन्मस्थान के गीता मंदिर में की जाती है। क्या होता है इसका स्वरूप विवरण देते हुए विजय बहादुर सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा।
1: षोडशोपचार पूजन की पद्धति है सनातन परंपरा में, उससे हमारे जो पूजाचार्य गण है विद्वान, वह पूजन कराएंगे और फिर भगवान प्रकट होंगे, अभिषेक होगा उनका। अभिषेक में जैसा क्रम रहता है, प्राकट्य के पश्चात उनका दिव्य अभिषेक, कई मन गौ दुग्ध और गौ दुग्ध से निर्मित दही शहद शर्करा आदि से परंपरागत रूप से होगा। वो जो अभिषेक का दूध एक रजत निर्मित गाय के थनों से निकलता है, उससे उनका अभिषेक होता है। ये एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न करता है अपने आप में। तत्पश्चात जन्म की आरती और दर्शन सबको सुलभ होंगे और उस समय विशिष्ट कलाकार इस बार कई जगह से आमंत्रित किए गए हैं, जो उस प्राकट्य का तुमल ध्वनि से प्रचार या सूचना जन सामान्य को देंगे और फिर लगभग 1:30 पर दर्शन बंद होकर शयन होंगे भगवान के।
0: मथुरा स्थित श्री द्वारिकाधीश मंदिर में इस महोत्सव की पूजा पद्धति पर प्रकाश डालते हुए सेवायत मुखिया जी सुधीर कुमार।
2: पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली के अनुसार ठाकुर जी के 12:15 सालग्राम जी का पंचामृत होता है। दूध है, दही है, शहद है, घी है, बूरा है, इससे ठाकुर जी का विशेष पंचामृत होता है। रात में 12:15 मध्य रात्रि में आरती होती है और ठाकुर जी के विशेष प्रकार के महाभोग आते हैं ठाकुर जी के जन्माष्टमी पर। जन्माष्टमी वाले दिन मध्यरात्रि में छठी पूजन होता है ठाकुर जी का। उसके बाद में सुबह दूसरे दिन नंद महोत्सव का आयोजन होता है, भव्य नंदोत्सव। करते करते नंद बाबा छठी पूजना ही भूल गए, साल भर तक ठाकुर जी की छठी ही नहीं पूजी, इसलिए जन्माष्टमी के दिन ही मध्यरात्रि में छठी का पूजन होता है। दूसरे दिन सुबह 10:00 से 11:00 तक नंदोत्सव होता है ठाकुर जी का। ग्वाल हैं, गोपी हैं, वो बनते हैं, सब पूजन होता है। नंद बाबा यशोदा जी का, ठाकुर जी का नंदोत्सव होता है, खेल खिलौने लौटाए जाते हैं।

0: रखते हैं। रात्रि को श्री कृष्ण जन्म के बाद फलाहार ग्रहण कर व्रत पूर्ण होता है।
1: पाग, पंजीरी, ठौर, मठरी, गुंजा, लड्डू, मोहन थाल और सकल पारे आदि व्यंजन ब्रज के घर घर में बनते हैं और आराध्य श्री कृष्ण को समर्पित कर प्रसाद रूप में अष्टमी के दूसरे दिन नवमी को ग्रहण किए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर घर घर में हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक रूप से तैयारियां की जाती हैं। प्रसाद हेतु कई दिनों पूर्व महिलाएं काफी व्यस्त होने लगती हैं। वहीं प्रभु विग्रह हेतु विशेष पोशाक का प्रबंध भी किया जाता है। इसी संबंध में हमें बताया श्रीमती कुंजन श्रीवास्तव ने।
2: कृष्ण भगवान का बहुत ही पावन पर्व है और हम लोग सब लोग बहुत ही उत्साह से इसको मनाते हैं, और जैसे सभी लोग हर मंदिरों में सब होता है उसी तरीके से हम लोग भी बहुत दिन से तैयारियां शुरू कर देते हैं। बाजार जाके भगवान की पोशाक लाना, उनके सारे श्रृंगार का सामान लाना सब करते हैं और सब लोग मिलके अच्छे से इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसी दिन भगवान का अभिषेक करते हैं दूध दही आदि से, और उसके बाद भगवान को नए पोशाक लाते हैं जो वही पहनाते हैं, और गहनों से जो भी अपनी क्षमता है उसको लाते हैं, गहने पहनाते हैं और फल फूल भोग सब लगाते हैं और सब लोग मिलके गाना भजन जो भी होता है सब करते हैं। रात में भजन जैसे भगवान जब प्रकट होते हैं तो उस समय गाया जाता है, बधाई भगवान को दी जाती है, यशोदा नंद को अपना मतलब हम लोग जो भजन है यहाँ के पारंपरिक उसको सुनाते हैं, और आपस में जो भी भजन और भी होता है सब गाते हैं, और रात में बस फलाहार लेते हैं और सारे दिन ऐसे ही बिता देते हैं भगवान के याद में। जैसे मेवा वगैरह बनाते हैं भगवान के लिए, पाग बनाते हैं, जब भगवान को भोग लगा देते हैं तभी है आलू है ये मखाना है मूंगफली है जो भी अपनी क्षमता होती है उसी अनुसार उसको बनाते हैं। पकवान भी बनाते हैं हम लोग हर तरह के, एक तो मेवा जैसे मैंने आपको बताया कि मेवे का पाग वगैरह बनता है, और हमारे यहाँ तो उसकी कढ़ी भी बनती है, कूटू सिंघाड़े आटे की सब पूड़ी कढ़ी पकौड़ी सब तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, और फिर वही रात में भोग लगा के फिर उसको हम लोग खाते हैं जन्म के बाद।
0: अष्टमी के दूसरे दिन नवमी को नंदोत्सव का आयोजन संपूर्ण ब्रजमंडल में होता है, परंतु गोकुल में नंदोत्सव आयोजन का मुख्य केंद्र होता है।

0: समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार से वर्णित है।
1: श्री कृष्ण को गोविंद, गोपाल, केशव, कन्हैया, द्वारकेश, द्वारिकाधीश, नंदलाल आदि आदि नामों से भी पुकारा जाता है। श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थिति प्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महापुरुष थे।
0: भगवान श्री कृष्ण को शास्त्रों में अजन्मा कहा गया है। क्या है इनका शास्त्र वर्णित स्वरूप, बताते हुए पंडित वासुदेव कृष्ण।
2: भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, पर उनका जन्मोत्सव तो सदा मनाया जाता रहा और मनाया जाता रहेगा। वे निर्गुण हैं, सगुण हैं, लोकोत्तर वैभवशाली हैं। श्रीमद् भागवत जी में उनका वर्णन ऐसे ही विरोधों से युक्त है। जो उनके जन्म का वर्णन है उसमें कितना विचित्र वर्णन के बादल हैं, तारे भी हैं और घना अंधकार है तथा महात्माओं की अग्नि भी प्रज्वलित है, आशा की किरण का दर्शन देते हैं, स्वयं अपने माता पिता के बंधन भी काट देते हैं, मथुरा से गोकुल जाते हैं और जो उनका आश्रय लेता है वो जमुना जी में तो क्या भव सागर में भी नहीं डूब पाता। तो इस प्रकार के उनके विरोधाभासों से भरे वर्णन बतलाते हैं कि वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त हैं। ब्रजरस के अधिकारियों को वे ब्रजरस प्रदान करते हैं, उनके एक एक वाक्य हमारे आदर्श हैं। मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि, और कर्मन ये वादकारस्ते की पंक्ति कंठ उतर चुकी है। वे धर्म संस्थापक हैं, छात्र धर्म के प्रतिष्ठापक हैं। यह संदेश उनके इतने विचित्र हैं जिसमें सारी मानवता को उन्होंने लपेट लिया। उपनिषद के वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की उपदेश उनके इस गीता की मधुर वाणी में समाहित हो गए। भाद्रपद मास में वे जन्माष्टमी के दिन अवतरित होते हैं। उनके अवतरण का महोत्सव इस समय में मनाया जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण सर्वत्र छाए हुए हैं और वे हमारी प्रेरणा के, हमारी मानवता के स्रोत हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। वसुदेव सुतम देवम, कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम।

0: जन्माष्टमी का ये पावन पर्व सामाजिक जीवन के साथ ही आध्यात्म, योग, सौंदर्य बोध, प्रेम और चिंतन की व्यापकता का प्रतीक है। यही कारण है कि हमारी उत्सव प्रियता ने मानव से महामानव, लौकिक से अलौकिकता के प्रतीक श्री कृष्ण के चरित्र रूपी पुस्तिका के हर शब्द को सहेजा है।
1: जिसने पग पग पर चेतना की निःश्रेयस और ईश्वरीय गुणों की अभिप्रेरणा से सभी को अभिरंजित और प्रेरित किया है।

अभी तक आप सुन रहे थे संगीत रूपक कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेखक थे डॉक्टर नटवर नागर। प्रस्तुति विजय सिंह नौलखा की थी। वाचन स्वर देवराज कृष्ण दीक्षित और अंजू सूद के थे।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। जय श्री कृष्णा साथियों, भारत विविधताओं का देश है, जहाँ अनेक धर्म, संस्कृतियाँ और परंपराएं विद्यमान हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व, जो आज हमारी मथुरा नगरी के साथ पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उद्देश्य संसार से अधर्म, अन्याय, अत्याचार और अज्ञानता का नाश करना था। उनके जन्म के समय कंस का अत्याचार अपने चरम पर था और उसी की समाप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने संसार में जन्म लिया।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में फिल्म मजबूर से हमने इसे लिया था। और आइए अब सुनवाते हैं ये अगला गीत।

जी हाँ साथियों, श्री कृष्ण का बचपन अत्यंत चंचल, आनंदमय और लीलाओं से परिपूर्ण था। उन्होंने गोकुल और वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला, माखन चोरी, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना जैसे अद्भुत कार्य किए। उनका प्रत्येक कार्य संसार को धर्म, प्रेम, करुणा और सत्य की ओर प्रेरित करता है। वे केवल एक

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे ऋतु पाठक, शबाब शाबरी और दानिश शाबरी की आवाजों में फिल्म तेवर से। जहाँ दोस्तों, आज के भौतिकवादी युग में जब मनुष्य भटक रहा है, श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की सच्चाई और कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, धैर्य और बुद्धि भक्ति से सब कुछ संभव है। उनके द्वारा दी गई गीता की शिक्षा आज भी संसार का मार्गदर्शन कर रही है।

ही है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें धर्म, प्रेम, करुणा और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती हैं। जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भक्ति की गहराइयों में डुबकी लगाने का अवसर है। हमें चाहिए कि हम उन्हें उस तरह से उनकी बताई हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और उनके बताए गए मार्ग पर चलें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए।

जी हाँ साथियों, भगवान श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना के केंद्र भी हैं। साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला और रंगमंच, हर क्षेत्र में श्री कृष्ण की उपस्थिति अद्वितीय है। संगीत और नृत्य राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक में रासलीला को प्रमुख स्थान मिलता है। चित्रकला के क्षेत्र में भी अगर देखें तो मध्यकालीन और आधुनिक काल के चित्रों में वृंदावन की रासलीला, माँ कंचोरी, कृष्णवध जैसे प्रमुख चित्र चित्रित किए जाते हैं। कविता और साहित्य में सूरदास, मीराबाई रसखान जैसे भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत भक्ति भाव व्यक्त किया है। इनकी रचनाएं आज भी जनमानस को भक्ति से

जी हाँ साथियों, श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्श है। प्रेम, करुणा, बुद्धिमत्ता और धर्म का अद्वितीय संगम। जन्माष्टमी का पर्व हमें हर वर्ष यह स्मरण कराता है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता और अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसका नाश निश्चित है। हमें चाहिए कि हम श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, गीता के उपदेशों को समझें और समाज में धर्म, प्रेम और सहिष्णुता का प्रसार करें।

श्रोताओ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म मीरा के मोहन से। गीत लिखा इंदिवर ने, संगीत अरुण पौडवाल का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो,
3: हेलो आकाशवाणी।
2: आदरणीय दीक्षित जी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
3: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी सर, राजी लवानिया बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। आजकल मथुरा आकाशवाणी का ये जो कार्यक्रम है बहुत पॉपुलरिटी की ओर जा रहा है, क्योंकि फोन लगाना बड़ा मुश्किल है।
3: ये आप लोगों का स्नेह है, प्यार है इस कार्यक्रम के लिए।
2: ये इस कार्यक्रम में तो आप जितना समय श्रोताओं को दें उतना कम है, इसीलिए तो हम हर बार आपसे फरमाइश करते हैं कि इस कार्यक्रम को एक घंटे का किया जाए। लेकिन
3: जी जी, सही कहा आपने, प्रयास जारी है।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आकाशवाणी मथुरा परिवार को हमारी सबकी तरफ से, श्रोताओं की तरफ से जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं।
3: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। कौन सा गीत सुनेंगे?
2: तेरी माया का न पाया कोई पार,
3: के लीला तेरी तू ही जाने,
2: तू ही जाने। जी जी जी,
3: सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर
0: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: जी। नारवानी हूँ, चकबड़ा
0: नारवानी साहब कैसे हैं
1: से। बहुत बढ़िया सर।
0: और तैयारियां कैसी हो रही हैं जन्माष्टमी की?
1: यहाँ से सर धूमधाम से तैयार होती है। यहाँ एक मंदिर है
0: जी
1: जहाँ पर रात को 8 बजे से 12 बजे तक
0: जी
1: 4 घंटे का बहुत बढ़िया कार्यक्रम होते हैं। महिलाएं मतलब थालियां सजा के रखती हैं
0: जी
1: एक से एक बढ़कर, जिनकी ज्यादा बढ़िया थाली सजी तो उनको इनाम दिया जाता है।
0: जी
1: और भी कई सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे इनाम दिए जाते हैं।
0: जी जी
1: सत्संग होता है, कुल मिलाकर बढ़िया 4 घंटे का कार्यक्रम होता है।
0: बिल्कुल,
1: और जगह जगह तो फिर मटकियाँ फोड़ी जाती हैं।
0: ये पर्व ही ऐसा है।
1: बिल्कुल सर, बाकी बिहार जी का जन्मदिन है तो धूमधाम से मनाएंगे।
0: बिल्कुल, जन जन के आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है सभी जगह।
1: बिल्कुल सर।
0: बताइए आपकी क्या फरमाइश है नारवानी साहब।
1: फिर से गाना सुनाइए अब। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया।
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: हम दीपचंद बोल रहे हैं गांव बहुतरा से। जी
0: दीपचंद जी। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में, और बहुत दिनों के बाद फोन मिलाया आपने।
1: हाँ, फोन बहुत दिनों बाद मिला है। तबीयत डाउन चल रही है या टाइम, जुकाम खांसी बुखार।
0: जी जी अपना ख्याल रखिए, तबीयत ठीक कीजिए जल्दी से।
1: हाँ, अब भरतपुर पहुंचा हूँ मैं दिखाने के लिए।
0: जी, और परिवार में सब ठीक हैं?
1: हाँ, सब ठीक है। टाइम तो
0: और आपका वृक्षारोपण का कार्य कैसा चल रहा है?
1: वृक्षारोपण का कार्य बढ़िया चल रहा है सर। अब कोई 80-90 पेड़ हो गए शमशान में। हाँ,
0: जी,
1: और खूब बढ़िया है ये देखने लायक।
0: दीपचंद जी, आज बहुत दिनों के बाद आपका फोन मिला है, फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
1: फरमाइश से अब जन्माष्टमी को कोई गाना सुनवा देना।
0: बताइए, आप अपनी फरमाइश बताएं,
1: हाँ, अपनी तरफ से सुनवा देना कोई जन्माष्टमी का गाना।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: मैं गांव उत्पाद से ज्ञान सिंह बोल रहा हूँ सर।
0: ज्ञान सिंह जी, स्वागत कार्यक्रम में आपका।
1: और साहब हमारी टीम बढ़िया है।
0: एकदम अच्छे हैं सभी लोग, आपकी दुआएं हैं सर।
1: दुआ तो साहब ऊपर वाले की है।
0: क्या हाल चाल है आपके?
1: हाल चाल ठीक है सर मेरे।
0: कार्यक्रम का आनंद आ रहा है?
1: बिल्कुल आ रहा था, डेली सुनता हूँ।
0: जी, बताएं आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी।
1: सबसे पहले तो मैं अपने मित्रों का नाम ले देता हूँ, इनको ढूंढने जाऊंगा मैं।
0: जी
1: महेंद्र सिंह यादराम है और लवानिया जी है आगरा से,
0: जी
1: नेत्रपाल जी है, एक ये प्रजापति जी है, इनके लिए मैं ढूंढने को लिए आ रहा हूँ। गाने में फिल्म है आंखें, दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये एक गीत। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह
1: भाई
0: जी।
1: भाई साहब मेरा कॉल लेने के लिए धन्यवाद आपके लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: दे दे दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे इंटरनेट।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी।
0: नमस्ते सर जी।
1: नमस्ते,
0: रामेश्वर चौधरी बोल रहा हूँ, जिरौली शासन।
1: स्वागत है चौधरी साहब।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप सभी लोग?
1: हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए, आपके क्या हाल चाल हैं?
0: बस मजे में है सर, थोड़ी बारिश का इंतजार है।
1: जी, बारिश कम हो रही है।
0: हाँ, थोड़ा फसल के हिसाब से थोड़ी हो जाए तो अच्छा रहेगा। पानी वानी
1: बिल्कुल
0: तो चलता ही है। हाँ
1: जी, गर्मी भी काफी है, उमस बहुत है।
0: जी जी जी बिल्कुल
1: जी, और बताएं चौधरी साहब, कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
0: सर। जन्माष्टमी की धूम है चारों तरफ, तो कुछ मिलता जुलता चारों धामों से निराला, ब्रज धाम ब्रज भूमि से।
1: लीजिए, सुनिए अपनी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे देवराज कृष्ण दीक्षित। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अर्पण।

श्रोताओं, आज का ये दिन समर्पित है उस नटखट नंदलाला को, जिसकी एक मुस्कान में माखन की मिठास है, जिसकी बांसुरी में प्रेम का संगीत है और जिसकी लीला में समाया है पूरा संसार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की ये पावन रात्रि, जब मथुरा की कारागार में देवकी की कोख से एक दिव्य प्रकाश जन्मा था। चारों ओर अंधकार था, अन्याय था, अत्याचार था, लेकिन उसी अंधकार को चीर कर आई एक आशा, कृष्ण। और फिर वासुदेव की बाहों में सिमटा वो नन्ना सा शिशु यमुना की लहरों को पार करता हुआ गोकुल पहुंचा और बन गया नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आइए, जन्माष्टमी के इस पावन उत्सव का आरंभ करते हैं एक ऐसे ही उल्लासपूर्ण संगीत के साथ।

वाह, कान्हा का जन्म हो और हर घर में उत्सव ना हो, माखन की मटकियां ना सजें, गलियों में हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की इसकी गूंज ना उठे, भला ऐसा कैसे हो सकता है। कृष्ण केवल देवकी नंदन नहीं है, वो यशोदा मैया के लाडली भी है। वही कान्हा जो कभी माखन की मटकी फोड़ देते हैं तो कभी अपनी भोली सी सूरत बनाकर अपनी मीठी मुस्कान से मैया का मन जीत लेते हैं। और जब मैया पूछती है कहाँ गए थे कान्हा, तो नटखट नंदलाला की आंखों में बस शरारत मुस्कुरा उठती है। और आइए उसी शरारत को नमन करते हुए अब सुनते हैं बाल कृष्ण की इसी मनमोहक छवि को।

कितना अद्भुत है कृष्ण का बचपन। कभी गोपियों की शिकायतें, कभी माखन की चोरी, कभी मैया की डांट और फिर वही भोली मुस्कान। लेकिन कान्हा की लीला केवल नटखट तक ही सीमित नहीं। जब वृंदावन की गलियों में उनकी बांसुरी बजती है तो जैसे पेड़ ठहर जाते हैं, यमुना की लहरें सुनने लगती है और राधा का मन उस मधुर स्वर में कहीं खो जाता है। कृष्ण और राधा का प्रेम बंधन नहीं, समर्पण है, शब्द नहीं, अनुभूति है। राधा कृष्ण के इसी अलौकिक प्रेम को अनुभव कराता है ये गीत।

श्रोताओं, जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, यह हमें जीवन का संदेश भी देती है। कृष्ण का जन्म हमें याद दिलाता है कि जब जब जीवन में अन्याय का अंधकार पड़ेगा, आशा का कोई ना कोई दीप अवश्य जलेगा। जब जब जन का मन भ्रमित होगा, कृष्ण की बांसुरी हमें भीतर की ओर बुलाएगी। और जब जीवन के कुरुक्षेत्र में हम स्वयं को अकेला पाएंगे, तब शायद कोई अदृश्य स्वर कहेगा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण की भक्ति में यही विश्वास है, यही प्रेम है, यही जीवन का संगीत है। और कृष्ण की बांसुरी भी, श्याम की बंसी भी जीवन का यही संदेश देती है।

जन्माष्टमी का ये पावन पर्व हमें केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने का अवसर ही नहीं देता, बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अधिक सार्थक

बनाने का संदेश भी देता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम में समर्पण हो, कर्म में निष्ठा हो और जीवन में मानवता का भाव हो, यही श्री कृष्ण के जीवन का सच्चा संदेश है। आइए इस जन्माष्टमी हम केवल मंदिरों और घरों को ही नहीं बल्कि अपने मन को भी प्रेम, सद्भाव, करुणा और भाईचारे के प्रकाश से आलोकित करें। भेदभाव और वैमनस्य को भूलकर एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जहां हर व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और सम्मान हो।

इसी भाव के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत का अर्पण यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी को आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो साथी इस समय हमारे केंद्र को सुन रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा हमें व्हाट्सएप संदेश, और व्हाट्सएप पर संदेश भेजने के लिए आपको नोट करना है हमारा मोबाइल नंबर। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225575। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225575। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए व्हाट्सएप संदेश। आपके व्हाट्सएप मैसेज को हम शामिल करेंगे अपने आज के इस कार्यक्रम में। तो आज की फरमाइश भेजने वाले हमारे कौन कौन से साथी हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं? आइए जानते हैं उन सभी के नाम जिन्होंने हमें संदेश भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से। और इस पहले गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से मैसेज भेज रहे हैं सोपान आडोकर, पीएस नवाड़कर, मोहन करागले। इसी गीत को पसंद किया है मथुरा से अनंता अरुणा। परिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव इस गीत को सुनना चाहती है। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल और बेबी सिया जाधव। कहरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजरा तबस्सुम, मदरसा गेट भावपुर मडियाहू जौनपुर से, अजन कुमार सिंह, गौरी वंदना सिंह, विनती विनायक सिंह, मोहिनी मोहित सिंह एवं इनकी प्यारी कोको रानी। गांव हिप्परसोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरान बाबू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। मोहम्मद कालिम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दरीबुल और बेगम शबनम, अजमा नजमा और इनकी भाभी सरिता गौतम इस गीत को पसंद कर रही है। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है अजीज भाई मतीन शेख चांद, फाकुर फूल वाले, सईद खलील मौसा, करीम शेख सलीम ने। ये साथी हमारे नेहरू पार्क निजामबाद तेलंगाना से। दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और गुड्डू, और यहीं से है लड्डू ही हमें संदेश भेज रहे हैं। ये साथी हैं श्रोता रघुवीर नगर से। इसी गीत को पसंद किया है मोहम्मद खाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद खाजा फसीरुद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया जिला वरंगल से। बुलाई नगर भीड़ महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नहाटा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांचल राय। गमरिया जमशेदपुर से हमें संदेश भेजा है बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल ने। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से पसंद करता है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। मौके पर नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल और सौभाग्य

भगवती उषा पाटिल, कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, सौंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेश शुभम और अक्षय सेन, लोरवी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमल कांत मरावी, प्रमीला नेहा, पुष्पराज मरावी और ऋषभ इसी संदेश को भेजकर हमसे ये गीत सुनना चाहते हैं। लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, नादेड़ से है प्रकाश जैन, मनीष कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी, राजेश कुमार, गंजेंद्र, हेयांश, सौंगा, मरगोल छत्तीसगढ़ से, ग्राम चांदूर बिस्वा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से, किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, ग्राम राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से, राज गवई, राज वीर गवई इस गीत को पसंद कर रहे हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, असद अरहाम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से ये संदेश हमें भेजा है इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से। इसी गीत को पसंद किया है बसूरी रोडी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसपुर से, पसंद करता है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी और प्यारा नवाज नुमैर। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, भावना मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पसंद करता है पीयूष सिक्का, कोयल और डुगू भाविक सिक्का। तो सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे पसंद किया है आप सभी साथियों ने। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर का गाया अमर प्रेम फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है राहुल देव वर्मन ने।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में अगले गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी साथियों ने। उमाली से अनुप कुमार उद्धव पाटिल इस गीत को पसंद कर रहे हैं और इसी गीत को सुनना चाहा है सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, नंदनी और अंजलि ने। यह है कृष्ण की नगरी मथुरा से इस गीत को पसंद करने वाले। आरती कुमारी, आराध्या कुमारी, विजय सुरलकर महाराष्ट्र से इस गीत की पसंद करता है। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरुद्दीन सुहान, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। यह है ऊपरकोट मोहल्ला चखोंटी बुलंदशहर से इसी गीत को पसंद किया है। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने। दलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाड़कर, निर्मला विशाल नारायण, सोपान और आशीष नवाड़कर। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांदु भूषण, संस्कृति पौरुष, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से। पांडुचंदन उषा राणी, प्रतीक्षा अभिषेक, सार्थक प्रथमेश, संतोष पांडुरंग कुम्भार, कुम्भार गली कोलगांव से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, प्रिया विशाल दिशानी और निमित आहूजा। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। सरोचौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी गर्वी, बेबी बाय हिमाक्ष, क्रियांश बगड़िया, योगेश ओम बगड़िया, बेबी गरिमा बगड़िया और रजत, गांव बांडी वाला फाजिल का पंजाब से, मथुरा गीवा और कौन सा ही पूना जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा चेतन और सुलोचना भगत, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल ईशान, पूजा परिहार इस गीत को पसंद कर रहे हैं। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और मयंक भाटिया, ओम प्रकाश राय आदि ये सभी साथी इस गीत के पसंद करता है। छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी बोल ये साथी है हमारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मौला वक्कार, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा और हिना कौसर, मोहल्ला हलवायान, शेरकोट जिला बिजनौर से।

इसी गीत को पसंद किया है गांव गोपी की नगरिया से मिठनलाल सारस्वत, नेहा नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, अनुराधा, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला और इनके परिवारी जन। गांव नौधरा से कोमल मास्टर, जसोदा, सूरज, रोहित, चंचल, अंजना, लिवानी, शिवानी, रेखा और मम्मी पापा। गांव कोवद वन से सुशील, सपना, रमेश, सुरेश, गावर और इनके मम्मी पापा। हाउस वोर्ड भरतपुर से शिवांश, शिवांगी, चुन्ना, सोनिया, अजीत और इनके परिवारी जन। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। फिल्म है मिस मेरी, गीत लिखा है राजेंद्र ने और संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। एसएमएस के माध्यम से हमारे इस अगले गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्या जायसवाल, बाबरी बाजार चंदौली से पसंद करता है विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है धनवाद रोड से बेबी मुस्कान।

कान आलम राही, अली राही, लड्डू और इनके परिवारी जनों ने। डॉली बेबी पूजा तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, अजय देव तामोरिया, देवशंकर तामोरिया, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश, अनिकेत और सागर कटक, डिंडोरी नशिक से विशाल गवली, सोनाली, समर्पण गवली और भक्ति गवली, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी बिट्टू, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और इनके परिवारी जन। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतारा सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, जसोदा का ये गीत पसंद कर रहे हैं। अगले साथी हमारे मदनपुर झारखंड से अब्बा साम, अमजद अली, लाडली निशा और इनके परिवारी जन। ममता डिंगरिया, कुणाल डिंगरिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, कोली नादेड़ से नारायण दयानंद, ओमकार और साई, कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश और जीविका, पूनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने, आजन कुमार सिंह, गौरी वंदना सिंह, विनती विनायक सिंह, विनोद कुमार खुशवाहा, ग्राम पोस्ट सरवनखेड़ा कानपुर देहात से, डी अशोक कुम्हार, अविका, जीविका, सानू कुम्हार, अर्चना कुम्हार। ये साथी हैं गणेश वाटिका आर्ट श्रीरामपुर से, कोयते वस्ती पूनावले से अजय सोनवने, करिश्मा और इनके परिवारी जन। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, भिमला अनेजा, जिला नादेड़ ऐताला महाराष्ट्र से शंकरलाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति, जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती और यहीं से हैं मेघा राशि और देवाश्री, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से, फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तासीफ हुसैन, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी, ये साथी हैं कस्बा सैंथल जिला भलेरी से, गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, मोताला महाराष्ट्र से विजय रतनमाला, ओम कुमार, आरती कुमारी, नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ, रसीद वारसी, ये साथी हैं मारहरा दरवाजा एटा से, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सभिया अंजुम खान, गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर, किसन सबकाल, आशा, सोनिया, विशाल, शास्त्री नगर वीड शहर से, सिगाड़ तलाई खंडवा मध्य प्रदेश से राधे श्याम यादव, श्रीमती प्रभा यादव, शालिनी यादव, कामेश यादव और भारती यादव, एम खलील कुरेशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरेशी, बेबी अरिबा हबीबा, पटियाली रोड गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डीकेश साहू, ये साथी हैं रसेड़ा छत्तीसगढ़ से। तो सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में गीत बात और SMS में बहुत सारे साथियों ने हमें संदेश भेजे जिनके पसंद पर सुनवाए गए आपको कार्यक्रम में ये गीत। साथियों, आज जन्माष्टमी के इस पावन उत्सव से विदा लेते हुए बस इतना ही। जब भी जीवन में मन उदास हो तो कान्हा को वो मुस्कान याद रखिए। जब राहें कठिन लगे तो उनकी बांसुरी की मधुर तान को अपने मन में सुनिए। और जब अपने आसपास प्रेम कम होता दिखाई दे तो स्वयं प्रेम बांटने की शुरुआत कीजिए। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 12:30 हुए हैं। रिजब सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित दामोदर शर्मा के गाए कुछ लोक गीत। संगत कलाकार हैं बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेश शर्मा, ढोलक पर संगत है फिरोज की और परकशन पर संगत कर रहे हैं उमा शंकर शर्मा।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
3: दूसरा कोई मैच है क्या?
4: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
3: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
5: पर बैंकिंग में नहीं।
6: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
5: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार पंडित दामोदर शर्मा के स्वर में गाए कुछ ब्रज लोक गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे पंडित दामोदर शर्मा, संगत कलाकार थे बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर संगत थी राजेश शर्मा की, ढोलक पर संगत कर रहे थे फिरोज और परकशन पर उमा शंकर शर्मा। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 1 बजने को आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन

मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 1:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में। अब से थोड़ी देर में यानी 1:15 पर बहने सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा घर घर जन्मे कन्हाई। इसके अलावा शिक्षक दिवस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत बहने सुनेंगी ब्रज में जन्मे कृष्ण कन्हाई विषय पर। कार्यक्रम प्रस्तुति सहयोग होगा उषा पांडे का, संयोजक विजय सिंह नौलखा होंगे। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे दिन में 1:45 पर। 2:30 का समय रहेगा NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होगी आज शाम 5:30 पर युवा साथियों के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी के साथ। इस कार्यक्रम में आज की बात के विषय होंगे दादा भाई नौरोजी जयंती, इसके अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व और भारतीय संस्कृति पर आप चर्चा सुनेंगे। झलकी के अंतर्गत आप सुनेंगे मैं ना ही माखन खायो विषय पर झलकी। लेखक होंगे श्याम सुंदर सुमन, प्रस्तुति होगी यतीन्द्र चतुर्वेदी की।

शाम 6:15 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक का। इसमें आज आप सुनेंगे ब्रज नव कथा के अंतर्गत जौ जौ होए धर्म की हानि। इस विषय पर वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश पाठक शशि। भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। शाम 6:50 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण का। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसके अलावा धान की फसल में समसामयिक कार्य, ओबी आधारित भेंटवार्ता आप सुन सकेंगे। विषय होगा गन्ना की खेती और छाता शुगर मिल। इस विषय पर जानकारी देंगे चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना मंत्री। इनसे भेंटकर जानकारी प्राप्त करेंगे दिलीप यादव। इसके अलावा अन्य भेंटवार्ता आप सुनेंगे जिसका विषय होगा पशुओं में हम्पी रोग। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अनुज कुमार। इनसे भेंटकर जानकारी प्राप्त करेंगे दिलीप यादव। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकेंगे आज शाम 7:31 पर। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नव रंग। नाटक कृष्णम वंदे जगत गुरुम ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। लेखक होंगे लक्ष्मीकांत उपाध्याय। प्रस्तुति होगी अचला नागर की। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगी विदुषी किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन। राग होगा रागेश्वरी। रात्रि 11:10 पर मंदिर श्री द्वारिकाधीश एवं श्री कृष्ण जन्म स्थान के भागवत भजन से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। मंदिर श्री द्वारिकाधीश से आंखों देखा हाल सुनाएंगे डॉक्टर मीनू खरे एवं डॉक्टर नृत्य गोपाल। श्री कृष्ण जन्म स्थल के भागवत भवन से आंखों देखा हाल सुनाएंगे श्रीयुत श्री कृष्ण एवं देश दीपक मिश्रा। प्रस्तुतकर्ता होंगे ओम प्रकाश सिंह। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में संक्षिप्त रूपरेखा।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 1:10 हुए हैं। अब सुनिए संवेद स्वरों में देशगान।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 1:15 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं जया आर्य।

नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज समूचे ब्रज मंडल में सिर्फ इसी की गूंज है, जहां देखो हर तरफ बधाइयां ही बधाइयां सुनने को मिल रही हैं। यही बधाइयां रेडियो के माध्यम से पहुंचाने मैं जया आर्य आज प्रस्तुत हुई हूं आप सभी की सेवा में, आपके अपने

0: पसंदीदा कार्यक्रम वनिता लोक में। श्रोताओं, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब जब मानवता अपने मार्ग से भटकी, तब तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप में अवतार लेकर संसार को सत्य, धर्म और प्रेम का संदेश दिया। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक युग की घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाली एक अमर प्रेरणा है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की पावन रात्रि में मथुरा की कारागार में देवकी और वासुदेव के घर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म के साथ ही मानो अंधकार में प्रकाश फैल गया। अत्याचार और अन्याय के बीच जन्मे कन्हैया ने ये संदेश दिया कि सत्य और धर्म की अंततः विजय अवश्य होती है। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अत्यंत मनमोहक था। उनकी नटखट लीलाएं, माखन चोरी, गोपियों के साथ रास और उनकी मधुर बांसुरी की धुन आज भी हर हृदय को आनंदित करती है। वे केवल नंदलाल और यशोदा मैया के प्रिय कान्हा ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के प्रिय हैं। घर घर जन्मे कन्हाई केवल एक उत्सव का भाव ही नहीं, इसका अर्थ है कि हमारे हर घर में प्रेम, करुणा, स्नेह, सत्य और धर्म का जन्म हो। हमारे मन में भी वही बाल कृष्ण जन्म ले जो हमें अहंकार से दूर रखे और प्रेम का मार्ग दिखाए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कर्म का महत्व समझाया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान आज भी पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। आज आवश्यक है कि हम श्री कृष्ण के संदेश को केवल जन्माष्टमी के दिन याद ना करें, बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारें। यदि हमारे व्यवहार में प्रेम हो, वाणी में मधुरता हो, कर्मों में सच्चाई हो और हृदय में करुणा हो, तो वास्तव में कहा जा सकता है, घर घर जन्मे कन्हाई, हर मन में प्रेम समाई, मिटे अंधेरा सत्य का दीप जले, हर हृदय में कृष्ण कन्हाई पले। आइए इस जन्माष्टमी पर हम लाला के जन्म का आनंद उठाते हैं इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से, जिसकी प्रस्तुति दी है उषा पांडे ने।
1: भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम योगी राज भक्त वत्सल धर्म कर्म एवं प्रेम के पथ प्रदर्शक यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव जन्माष्टमी पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। वो कृष्ण हैं, कमलनाथ हैं, वासुदेव हैं, श्री हरि हैं, देवकी नंदन हैं, यशोदा वत्सल हैं, गोविंद हैं, अनंत हैं। किसी भक्त के गोपाल हैं, किसी सखी के गिरधारी हैं, किसी के मुरारी हैं, तो किसी के जगन्नाथ हैं। जब भी कन्हैया के भक्तों पर विपदा आन पड़ती है, हर भक्त अपनी अपनी भक्ति भावना से कान्हा को पुकारता है।

कृष्ण कन्हैया ने द्वापर युग में युग पुरुष के रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र की मध्य रात्रि में कंस के कारागार में जन्म लिया। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मच उठती है धूम कन्हैया के आगमन की।

के आने की खुशी में प्रकाशवान हो उठता है। यूं तो भारत वर्ष में पावन जन्माष्टमी पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन ब्रज मंडल की बात करें तो उस अजन्मे के जन्मोत्सव की सुनहरी छटा में सराबोर हो जाती है हमारी यह पावन ब्रजभूमि। हमारे कन्हैया ने इसी ब्रजभूमि में यानी मथुरा नगरी में जन्म लेकर समय समय पर दानवों और दुष्टों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा की और साथ ही अपनी मनोहारी लीलाओं द्वारा गोप गोपियों के चित्त का रंजन किया। अपनी चित्तहरणी बांसुरी की धुन पर गोपियों को नाच तो नचाया ही, साथ ही अपनी प्रियतमा वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी संग महारास रचाकर प्रेम की स्थापना भी की।

0: यशोदा नंदन की प्रिय क्रीड़ा स्थली श्री वृंदावन धाम में भगवान ने कालिया मर्दन और गोपी चीरहरण जैसी कई लीलाएं की। कहीं माखन मिश्री तो कहीं दूध दही का दान कन्हैया गोपियों से मांगते थे। जन्माष्टमी पर्व के आते ही श्री धाम वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। समस्त ब्रजवासी पूरे हर्षोल्लास के साथ कन्हैया की अगुवाई में जुट जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ यह पावन श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए आप हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में सेवायत श्री जुगल किशोर गोस्वामी जी।
1: कृष्ण जन्माष्टमी हमारे पूरे भारत वर्ष में और विश्व में सभी लोग इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। श्री धाम वृंदावन में जन्माष्टमी के दिन श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर को बहुत ही दिव्य भव्य सजाया जाता है और जगमोहन में श्री बिहारी जी महाराज को विराजमान करते हैं। ठाकुर जी की रात्रि में 11 बजे से 12 बजे तक बिहारी जी के चबूतरे पर भगवान कृष्ण के जन्म की कथा होती है। 12 बजे सही 12 बजे ठाकुर जी का हम लोग दूध दही घी शहद बूरे से अंदर अभिषेक करते हैं। जन्माष्टमी के श्रृंगार में बिहारी जी महाराज अपने स्वरूप को बहुत ही छोटे स्वरूप में दर्शन देते हैं। यही विग्रह जो आज आप दर्शन कर रहे हैं

0: ठाकुर जी की कृपा से छोटा नजर आएगा और प्रसाद, खेल, खिलौने ये सारी सामग्री बटेंगी। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सारे ब्रज धाम में ब्रजवासियों का एक ही गीत रहता है, बोले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। लाला कन्हैया के होने पर हाथी घोड़ा पालकी तक का दान किया है। हमारे ब्रज की पदावली में आता है कि हुआ सुत सोहना रे मन का मोहना अवतार, आई सब गोपियां रे बाबा नंद के दरबार, बटत बधाइयां रे बाबा नंद के दरबार। चारों तरफ बधाई का माहौल रहता है, चारों तरफ खुशी का माहौल रहता है। सभी ब्रजवासी उस दिन ठाकुर जी में कुछ ना कुछ न्योछावर करके, कोई खेल है, कोई खिलौना है, कोई स्वाफी है, कोई बर्तन है, ठाकुर जी के निज प्रांगण में सभी को बांटते हैं। दूसरे दिन हमारे यहाँ नंदोत्सव का ठाकुर जी का कार्यक्रम मनाया जाता। भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद कंस का इतना आतंक था, भगवान को कारागार में जन्म लेना पड़ा। जन्म के समय सभी ताले बेड़ियां उनके माता पिता की हट गई हैं और उसके बाद में उनके पिता वसुदेव जी उनको लेकर के ब्रजधाम आए हैं और ब्रजधाम में जबी से हमारे यहाँ ठाकुर जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिहारी जी महाराज का नवीन श्रृंगार वैसे तो प्राय रोज होता है, लेकिन उस दिन पीले वस्त्र में ठाकुर जी रहेंगे। दूसरे हम लोग ठाकुर जी के प्रसाद में दही और हल्दी मिलाकर के सब भक्तों पर छिड़कते हैं। इसका भाव है कि लाला की ये सब लोगों को छींछी बढ़ रही है और सभी भक्त आनंदित होकर के इस दिन अपने अपने घर पर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए जाते हैं और प्रत्येक ब्रजवासी और प्रत्येक बाहर का आदमी उस दिन ठाकुर जी का फल, मेवा, पकवान बना करके ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, जिसकी जो भी सामर्थ्य। यही नंदोत्सव का आनंद।
1: प्रशासन की ओर से व्यवस्था के बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरह से प्रशासन सक्रिय होता है उस दिन।
0: प्रशासन ने इस समय जितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, मैंने बहुत समय से देख रहा हूँ, सब पूरा प्रशासनिक अधिकारी, पूरे मंदिर के कर्मचारी, पूरे मंदिर का प्रशासन सब उसमें बहुत अच्छा योगदान से नंदोत्सव को मनवाते।
2: गोवर्धन गिरिधारी ने गिरिराज को धारण कर समस्त जनमानस में कर्म की प्रधानता को प्रबल बनाया। दुष्ट कंस के वध के बाद लीलाधारी कन्हैया वंशी बजैया पहले मथुरा नाथ बने और फिर द्वारिकाधीश बन एक कुशल राजनीतिज्ञ होने का समूचे संसार में परिचय दिया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ सारथी के रूप में संसार को संदेश देते हुए

जगद्गुरु परम पुरुष सर्व पालक निरंजन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शैशवावस्था से लेकर जीवन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक कर्तव्य को एक संदेश के साथ निभाया। आधुनिक समय में आज प्रत्येक मानव को उनके द्वारा दिए गए संदेशों का अनुकरण करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में दिए गए संदेश से मानव जीवन का मार्गदर्शन होता है। आज के आधुनिक समय में मानवता के साथ साथ कर्तव्य परायणता की परम आवश्यकता है। हमारे कान्हा के, हमारे लल्ला के पावन जन्मोत्सव

जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आहा, श्रोताओं सच में बहुत आनंद आ गया। आप सभी ने सुना ये विशेष कार्यक्रम घर घर जन्मे कन्हाई, प्रस्तुति थी उषा पांडे की। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। गुरु

श्रोताओं, भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये हमारे शिक्षकों को, हमारे गुरुओं को समर्पित है। ये दिन हमारे जीवन में शिक्षकों के अमूल्य योगदान, समर्पण और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर है। शिक्षक केवल हमें किताबों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और हमें जीवन की सही राह दिखाते हैं। भारत में शिक्षक दिवस महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वे एक महान शिक्षक थे और शिक्षा को समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षक हमारे जीवन में उस दीप के समान होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। एक शिक्षक बच्चे की प्रतिभा को पहचानता है, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। एक अच्छे शिक्षक का प्रभाव केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता, उनके द्वारा दिए गए संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन मूल्य विद्यार्थी के साथ जीवन भर रहते हैं। शिक्षक हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल अच्छे अंक प्राप्त करने से ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा के साधन भले ही बदल गए हों, लेकिन शिक्षक का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। तकनीक हमें जानकारी दे सकती है, लेकिन उस जानकारी का सही उपयोग करना, सही और गलत में अंतर समझना तथा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, ये कार्य एक शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षक दिवस हमें अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। हमें केवल इस दिन फूल देकर या शुभकामनाएं देकर ही नहीं, बल्कि उनके बताए आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर उनका सम्मान करना चाहिए। तो आइए इस शिक्षक दिवस पर हम अपने सभी शिक्षकों को हृदय से नमन करें दो पंक्तियों के माध्यम से। गुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं, गुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं, जीवन को नई दिशा दिखाते हैं। उनके चरणों में सम्मान हमारा, गुरु से ही उज्ज्वल हो

भविष्य हमारा। अंत में मैं अपने सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देती हूँ, किंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात अवश्य कहना चाहूंगी कि श्रोताओं, श्री कृष्ण से अच्छा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। वे एक अच्छे शिक्षक, अच्छे मित्र, अच्छे सारथी साबित हुए हैं। एक बार उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपना कर देखिए, जीवन में हर प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और आज के लाला के जन्म की बधाई के साथ मैं जया आर्य इस वक्त सुन रहे सभी ब्रजवासियों से अनुमति चाहूंगी, एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।

अभी बहनें सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी जया आर्य। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न की 1:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं ये पहला नगमा। फिल्म है संजोग, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गाया राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है रविंद्र जैन ने और संगीत भी इन्हीं का है।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म राम तेरी गंगा मैली में। और लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का ये अगला और अंतिम गीत, आशा भोसले और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म है लगान। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत ए आर रहमान का है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में फिर उसके बाद हिंदी में, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: river is in spate. Continuous rain has affected normal life in several districts including Chhatarpur, Satna, Mandla and Meher. 5 gates of the Bargi Dam in Jabalpur have been opened to release water, while water is also being released from the Kutni Dam in Chhatarpur. The weather department has issued an orange alert for very heavy rainfall in several districts including Shivpuri, Guna, Chhatarpur, Sagar, Damoh and Narmadapuram. Heavy rain is likely to continue in many parts of the state over the next 2 days. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
1: 10 major rivers including the Ganga, Punpun, Gandak and Kosi are in spate in Bihar. Flood conditions prevail in 16 districts of the state.
2: In Bihar, 8 rivers including the Ganga are flowing above the danger mark. The water level of the Ganga in Patna continues to rise. With increasing backwater pressure in the Punpun and Dardha rivers, surveillance of the protective embankments has been intensified. Instructions have been issued to keep all 108 gates of the Patna flood protection wall closed. Floodwaters are rapidly spreading into low-lying areas of the affected districts, disrupting road connectivity in rural areas. Breaches in embankments at Asthava in Nalanda district and Dhanrua in Patna district have submerged hundreds of acres of crops. In view of the rising water levels of the rivers, the Disaster Management Department has directed Patna and 7 other districts to remain on high alert. In view of the seriousness of the situation, Chief Minister Samrat Chaudhary will conduct an aerial survey of the flood-affected areas today. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
1: At the China Masters Badminton, the Indian pair of Sattvik Sai Raj, Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Danish pair of Kim Astrup and Anders Karup Rasmussen this evening for a place in the semi-finals in Shenzhen, China. The match is estimated to begin at 4:10 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Centre to make available DNA profiling services for first-degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1,282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
4: आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट जीएसएलवी।
5: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जीएसएल

0: VF-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
2: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार यह अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके

0: अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 3,000 रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी

0: का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 2:30 हुए हैं। जब सुनिए NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
3: और मैं अजीत। महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
3: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
3: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
3: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर।

0: पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने AI से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
0: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें AI के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए।
0: जी
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की,
0: जी
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
0: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
0: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाई, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही,
0: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई,
0: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
0: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
1: जी श्रोताओ, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की,
0: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
0: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स।
0: जी,
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
0: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए,
0: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
0: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
0: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
1: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की।
0: जी,
1: तो उन्होंने यानी सत्यानंद जी ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए।
0: जी,
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
0: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
0: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओ, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी जी?
1: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई,
0: जी,
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर।
0: श्रोताओ, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के

0: लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
1: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसलिए
0: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहां भी रहें, यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं, तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
0: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहां कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरधर गोपाल।
0: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।

0: का शिंगार नहीं करने दूंगी।
1: भाई बता दूंगा ना बेटी।
0: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
1: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
0: सच पापा, ये है मेरा दूल्हा।
1: सच्ची भाई?
0: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
2: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई, कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदाबाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तू क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंद लाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता, धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा। दासी।
6: जी राणा जी महाराज।
5: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
6: जी महाराज।
5: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
6: राणी सा की जय हो।
7: आओ सखी, भीतर आओ।
6: जी, वो
7: क्या हुआ सखी? तनिक चिंतित सी लग रही हो।
6: वो कुछ नहीं।
7: कहो ना सखी, क्या बात है?
6: वो राणी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
7: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
6: पर हमें तनिक शंका होती है।
7: दो हमें, हम अभी पियेंगे।
6: रुकिए राणी सा।

0: रानी सा जरा ठहरिए, रानी सा क्या मालूम विष हुआ तो?
1: राणा भेजिया विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो।

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या।
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: आह हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा, मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
6: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा।
10: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
8: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर।
10: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा।
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
10: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं।
5: क्या सच? गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती है।

0: सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: इतनी मधुर आवाज़।
3: हाँ।
4: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
5: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
6: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
4: तो क्या हमारी मीरा बाई चली जाएंगी?
5: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा
3: यार।
7: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
8: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी

0: मिठाई आती है?
1: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
2: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
0: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
2: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
0: सबको बांटते हैं और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
2: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
3: हाँ, ये बात तो ठीक है,
2: हो गई दुगनी।
4: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
0: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
2: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
0: हाँ, 60 किलोग्राम है।
5: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
0: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
4: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
2: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
3: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो
0: पता है हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
6: 300 किलोग्राम?
2: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
3: और चीटी की मम्मी उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
5: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
0: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो तुम छोटे डायनासोर के बाद हम तो मिठाई खाते हैं।
5: हाँ, कहीं 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की प्रथम सभा भी यहीं पर संपन्न होती है। आज शाम 5:30 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।